स्वभक्त्या प्रह्लादमत्य हरिसंभव कारणात्मन् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् सोमान्वयोद्भव समस्त सुराजमौले भूभारसंहरणतोषित कृष्णमूर्ते बाह्लीकराज बहुराज सुधर्मधावन् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान।

0: सर्विस है, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आनी है, आप असदुल्ला से खबरें सुनिए, खास खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। श्री हरीश ने कहा कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार होता रहा है और इसलिए मानता है कि आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत

0: ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
1: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
2: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जयराम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जयराम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
1: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

0: ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र

0: as well. So, we're in a good spot and hopefully we can perform out there today.
1: Go well this evening.
0: Thank you.
1: So the news from the toss, South Africa have won it. They're having a ball.
2: साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया. नाउ द थिंग दैट नासिर हुसैन वाज कॉन्स्टेंटली अल्यूडिंग टू एट टॉस ख्याति वाज ही 2023 एंड 2025 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स 20 ओवर्स एंड 50 ओवर्स एडिशंस व्हेन इंग्लैंड वर नॉक्ड आउट बाय साउथ अफ्रीका इन दिस वेरी स्टेज.
3: इज डेफिनेटली दे आर नोन टू अपसेटिंग एनी टूर्नामेंट एनी टीम. And their form is yet to come. And I mean, especially if you talk about Wolwart, she's yet to give her best. I guess, they can do anything. And any team can do anything in T20 cricket. But yes, having said that, this English team looks very balanced at the moment. And they're giving their best. Their batters are contributing really well. Their bowlers are contributing really well. They look to be a very balanced side. So let's see who plays well today.
4: जी, और कंसिस्टेंसी जो है वो इंग्लैंड की इस पूरे टूर्नामेंट में एक मजबूत पक्ष उसका रहा है. और ऐसे में जिशान, अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला कितना कांटे का, कितना नजदीकी हो सकता है, क्योंकि पिछला सेमीफाइनल बिल्कुल एक तरफा रहा था.
5: बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये अच्छा मैच होएगा. और खासकर हमारे रमन साहब ने साफ साफ कहा है इस बात को, तो मैं उनकी बातों को बहुत गौर से सुन रहा था. तो मुझे लगता है कि ये सच बात है कि ये अच्छा मैच होने वाला है. खासकर जहाँ तक इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का जो प्रीवियस और जो पास्ट चीज़ें रही हैं उनके आपस के मैचेस के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंग्लैंड को आज के दिन में, आज जो उसकी टीम है उसके हिसाब से, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एज है इंग्लैंड की टीम के लिए. फिर भी एक अच्छा मैच होगा, इसलिए कि उनके पास जो बैट्समैन हैं, खासकर साउथ अफ्रीका के पास जो पेस बॉलर्स हैं उनके, वो काफ़ी अच्छे हैं. एक एक मैच में उन्होंने अच्छे बॉलिंग करके, और उनका इकोनॉमी भी बहुत अच्छी रही है साउथ अफ्रीका का, पेस बॉलर्स की खासकर. तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा. अच्छे बैट्समैन, जो बैट्सवुमेन जो हैं वो इंग्लैंड टीम की, और जो खासकर जो पेस बॉलर्स, पेस बॉलिंग जो कर रही हैं साउथ अफ्रीका की जो वुमेंस टीम की, तो मुझे वो एक जो एक वॉर जो नजर आना है, वो मुझे लगता है कि एक सही में एक बहुत अच्छा वॉर देखने को मिलेगा.
2: सो बैटल विद इन द वॉर टू लुक अहेड टू. नाउ राजा, वी हैव सीन विद इंग्लैंड द वे दे आर फंक्शनिंग लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन. चार्ली डीन वॉज कैप्टनिंग इन द गेम्स इन बिटवीन व्हेन सिव अब्रंट वॉज इंजर्ड. Every individual knows their roles and is performing that to the best of their abilities.
6: I think that's the hallmark of a good team, Megha. And any team that plays as well as England has done should fancy itself. Even though the skipper looked a little disappointed that she was not able to get a first ball, I think England got the batting to win this game, to put pressure on South Africa. And everything that is past, you know, you've been talking about a couple of games that South Africa won in the last two World Cups, both in the 20 over format and the 50 over format against England. I don't think that's going to count for much. What you do today is what is going to matter a lot, and I think England has got the well-balanced team. If you talk about South Africa, you're talking primarily about their pace bowling, not so much about their batting, not so much about their spin bowling. England seems the well-rounded side. I think England will have the edge in this game.
4: Khyati, home condition aur gharelu support bhi hoga England ke paksh mein, to ye unke liye positive ho sakta hai ya unke upar pressure aa sakta hai iski wajah se?
3: Abhi tak to jaisa dekhne ko mil raha hai is tournament mein, unko support hi mil raha hai, and they are very well aware of the conditions, and jis tarike se wo khel rahe hain unko pata hai ki kis tarike se hame kab hame gear, second gear lagana hai, kaise kab defensive hona hai. To I think they are getting good support from the crowd as well as they are well aware of अबाउट द कंडीशंस.
2: जीशान, खास करके टॉप ऑर्डर ने काफी अतिशी बल्लेबाजी की है अब तक. टॉप थ्री का जो स्कोरिंग रेट रहा है 8.8 का, अभी तक टूर्नामेंट में सर्वाधिक.
5: हाँ बिल्कुल, देखें उनके पास में जो जो उनकी सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं इंग्लैंड के बैटिंग लाइनअप की अगर बात करें, तो हॉज का जो रहा है परफॉर्मेंस, वो उन्होंने सेंचुरी भी की है इस वर्ल्ड कप की सीरीज में, तो एक वो ज़रूर से

नजर आना होएगा कि शुरू के 6 ओवर में क्या करती हैं। बहुत अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं मुझे कि पीछे की बातों को नहीं कोई भी सोचता है। जब आज का मैच होता है तो आज के मैच को देखते हैं, और फिर ये भी जाहिर सी बात है कि थोड़ा सपोर्ट तो ज़रूर है कि अगर आप होम ग्राउंड में खेल रहे हैं तो आपको फ़ायदा होता है। उनके पास ज़रूर से वो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ता है। मोरल सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ख़ासकर जो जो वुमेंस क्रिकेट की टीम होती है उसको एक बहुत ज़रूरत होती है मोरल सपोर्ट की। वो है उनको इंग्लैंड के साथ में, थोड़ा एज है वहाँ पे, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड में होना है, बैटिंग करनी है उन्हें। शुरू के 6 ओवर के जो मैचेस होंगे उस 6 ओवर के मैचेस में उनको ज़रूर से ये समझना होगा कि कैसे उनके पेस बॉलर्स को उनको फेस करना है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है शुरू का 6 ओवर। अगर वो शुरू के 6 ओवर में विकेट कम गिरे और एक 40-45 के आसपास वो स्कोर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ से एक मैच आगे बढ़ना इंग्लैंड के लिए फ़ायदेमंद होएगा।

0: को ज़रूर से ये समझना होगा कि कैसे उनके पेस बॉलर्स को उनको फेस करना है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है शुरू का 6 ओवर। अगर वो शुरू के 6 ओवर में विकेट कम गिरे और एक 40-45 के आसपास वो स्कोर कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ से एक मैच आगे बढ़ना इंग्लैंड के लिए फायदेमंद होएगा।
1: और अजय, बैटिंग ही तो रही है इंग्लैंड की, जिसकी वजह से ये टीम अपने ग्रुप के 5ों मैच जीतने में सफल रही है। दूसरी तरफ हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो मिला जुला प्रदर्शन रहा है, किसी में किसी खिलाड़ी ने बढ़िया किया, किसी और मैच में किसी और खिलाड़ी ने बढ़िया किया, तो 4 मैच ऑस्ट्रेलिया के अलावा उन्होंने भी जीते। मनोवैज्ञानिक रूप से इस मुकाबले में कौन सी टीम बेहतर स्थिति में होगी?
2: इंग्लैंड होगी, क्योंकि ओवरऑल कमांडिंग परफॉर्मेंसेज इंग्लैंड के ज़्यादा बेहतर रहे। अगर आप पिछले मैच भी देखें जो बांग्लादेश के साथ था साउथ अफ्रीका का, दे वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब नहीं लग रहा था कि आसानी से जीत लेंगे वो मैच, लड़खड़ा गई थी टीम, और वहाँ से उठ के आना, जीतना अच्छी बात है, बट आई थिंक इंग्लैंड के पास है जो वॉट एवर एज दैट वी आर लुकिंग फॉर इज विथ इंग्लैंड, और ख़ास करके क्योंकि इस पिच पे आज मैच हो चुका है ऑलरेडी, और जब आप और क्रिकेट खेलेंगे इंग्लैंड के फिरकी गेंदबाज विल कम इन टू प्ले एंड साउथ अफ्रीका इज प्रॉब्ली गिवन देम दैट चांस। अब मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए हर चीज़ सही बैठ रहा है और आज वो मैच इंग्लैंड के पक्ष में जा सकता है।
3: One of the players contributing to that edge is Dani Vyad-Todge, and we've seen in her case took a paternity break, and in fact didn't play a whole lot of games in the build-up. The games that she played, she struggled, but brought her A game to the World Cup.
4: Kathy. Yeah, I mean, she's a very good batter and she always give a very good start to the team, and she has given, she has proved in this tournament as well. But if you see that there are other batters also, because she knows that we have deep batting lineup, so that is the reason she is able to give those starts to the team. And if you lay a good foundation, definitely, they can find a very good score in this match.
1: Jishan, इतिहास का किसी मैच में कितना बड़ा योगदान रहता है? क्योंकि अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, 2023 के सेमीफाइनल में उन्होंने इंग्लैंड को हराया था, 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप हुआ था पिछले साल, उसमें भी साउथ अफ्रीका की टीम इंग्लैंड को हराने में कामयाब रही थी, तो वो क्या साइकोलॉजिकल एज होगा उनके पास इस मैच में? इंग्लैंड की टीम प्रेशर में होगी?
0: ज़रूर, थोड़ा कहीं ना कहीं वो दिमाग में रहता है कि हम 2020 और 50 दोनों में साउथ अफ्रीका से अगर हारे हुए हैं तो ज़रूर थोड़ा ना थोड़ा तो रहता ही है, इसमें

0: वो कहीं ना कहीं थोड़ा रहता है कि वो एक प्रेशर थोड़ा सा होता है, लेकिन मुझे ख़ासकर अभी जो इनके परफॉर्मेंस मैं देखता चला आ रहा हूँ इंग्लैंड की टीम का, तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि वो पुरानी जो बातें हैं वो चीज़ें कहीं थोड़ी होंगी 1-2%, लेकिन उन चीज़ों का कोई असर यहाँ नहीं होएगा। और इंग्लैंड नो डाउट, मुझे जहाँ तक यकीन है कि इंग्लैंड एक अच्छा परफॉर्मेंस आज करेगा, लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कोई भी प्रेडिक्शन पहले से कर देना इस मेरे ख्याल से तो मैं नहीं कर सकता कभी भी। हाँ ये ज़रूर है कि मैं कह ये समझता हूँ कि भाई लास्ट ओवर तक मैच होते हैं T20 के, और आखिरी वक्त में आखिरी बॉल पे भी कुछ डिसीजन बदल जाते हैं। जहाँ तक इस मैच की बात है, साउथ अफ्रीका और उनकी बात अगर आपस में करें आप, तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो ऑब्वियस है कि इंग्लैंड के हैं, ग्राउंड उनका है, जो स्पेक्टेटर्स हैं वो उनके हैं, उनकी फैमिली के लोग होंगे आसपास में, उनके फ्रेंड्स होंगे सारे, तो वो जो एक सपोर्ट होता है बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड और परफॉर्मेंस भी जो उनका है वो परफॉर्मेंस ये शो कर रहा है कि इंग्लैंड की टीम जो है आज के दिन में बेहतर नज़र आ रही है बनिस्बत के साउथ अफ्रीका के। लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट आखिरी बॉल तक, और वो भी T20 है तो वो आखिरी बॉल तक होता है, तो हमें वो इंतज़ार करना पड़ेगा कि कौन बेहतर तरीके से इस मैच को लेकर के जाता है।
1: और श्रोता किस टीम के समर्थन में है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। रिमाइंड यू, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आर नंबर 011-2342-1084 एंड 85।

0: लेट्स लिसन इन टू द फर्स्ट कॉलर. नमस्कार जी. रवि, क्या सवाल या क्या टिप्पणी है आपकी? जी जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए और आपकी टिप्पणी के लिए. वेल आवर लिसनर देयर सर्टनली नॉट प्लेइंग इट सेफ, नॉट प्लेइंग इट विद अ स्ट्रेट बैट. ही इज एम्फेटिकली डिक्लेयर्ड दैट साउथ अफ्रीका विल विन इट कर्टसी आया बोंगा खाका. एंड वेल साउथ अफ्रीका डू हैव अ ग्रेट बोलिंग अटैक, पर्टिकुलरली द पेस अटैक. 25 विकेट्स दैट द पेसर्स हैव पिक्ड अप इज द हाईएस्ट थस फार इन द टूर्नामेंट. राजा,
1: but you have to look at the teams that they have played. I think apart from India, the kind of competition that they would have gotten, picking up wickets against Bangladesh, I'm not watering down their efforts, but all that doesn't matter because you're up against a superior team. You're up against the home team now. Whatever you've done in the past has brought you here, but you've got to perform at your best now, Megha, and that can happen only when they bowl on the spot today and keep the English batters quiet, earn some wickets early on with the new ball, and that is when all the effort that they've put in so far in the tournament will bear fruit. They'll have to play very good cricket to beat England.
2: Or मेघा, हमारे एक श्रोता ने कहा कि कमेंटेटर जो है वो अंपायरों के नाम बताएं कि आज के मैच में कौन कौन से अंपायर अंपायरिंग कर रहे हैं, तो आप बता दें.
0: जी बिल्कुल, एलोइस शेरिडन, जैकलीन विलियम्स हैं दो अंपायर, और टीवी अंपायर हैं क्लेयर पोलोसैक, और रिजर्व अंपायर हैं कैंडेस या बोडे.
2: और अब सवाल ख्याति से कि दोनों टीमों की कप्तानों पर अगर नजर डालते हैं तो इंग्लैंड के कप्तान नैट सिवरब्रंट फिट होने के बाद इस मैच में वापसी कर रही हैं. दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुल्फॉर्ट फॉर्म के लिए संघर्ष कर रही हैं पूरे टूर्नामेंट में, और ऐसा अहम मुकाबला है. दोनों की कैप्टेंसी के साथ साथ बल्ले की कितनी बड़ी भूमिका इस सेमीफाइनल मैच में रहने वाली है?
3: देखिए, अगर आप इनका पुराना अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, इन दोनों का मिडल नेम जो है वो कंसिस्टेंट है, तो आई थिंक इस तरीके से अगर आप इन दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे बहुत अहम माना जाएगा. एंड जिनका मिडल नेम ही कंसिस्टेंसी है, तो आई एम श्योर दैट दे विल प्रूव देयर बैटल एंड मेटल. एंड डेफिनेटली वोल्वर्ट का, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, उसका भी हर बेस्ट इज येट टू कम, एंड आई थिंक इट्स अ बिग गेम फॉर देयर टीम. डेफिनेटली शी विल शो अ गुड गेम टुडे.
2: और हमारे इस कार्यक्रम में चार चांद लगाते हैं हमारे श्रोता. एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर. जी स्वागत है आपका.
4: नमस्कार सर,
2: नाम बताइए अपना.
4: सर मैं विश्वप्रीत सिंह बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर जिला राजौरी से.
2: जी अपना सवाल और जो भी टिप्पणी आपकी वो कृपया बताएं.
4: सर मेरा प्रश्न ये है कि आज जो सेमीफाइनल मुकाबला हो रहा है दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड का, मैं चाहता हूँ कि आज दक्षिण अफ्रीका जीते क्योंकि इनका लक हमेशा इनके खिलाफ जाता है, आज इनको ईश्वर जिताए. और मेरा ये प्रश्न है आपको कि आज क्या दोनों टीमों के प्लेइंग 11 में कोई बदलाव है क्या?
2: जी प्लेइंग 11 की बात करें तो बदलाव तो है कुछ दोनों ही टीमों में, और हम आपको बताते हैं कि क्या बदलाव है. मेघा बताएं कृपया.
0: बिकॉज द कैप्टन कम्स बैक, नैट सिवरब्रंट कम्स बैक फॉर इंग्लैंड, सो सोफिया डंकले हैज हैड टू मेक वे फॉर हर. सो दैट्स द चेंज इन द इंग्लैंड प्लेइंग 11. एंड सोफिया डंकले हैड बीन फीचरिंग इन द गेम्स वेयर वी डिडंट सी स्किपर नैट सिवरब्रंट अराउंड. एंड टॉकिंग अबाउट साउथ अफ्रीका, दे हैव गॉन फॉर वन चेंज इज वेल, एंड सुनील लूस इज कम इन फॉर डेन वैन नीकर्क.
2: जी और राजा, अगर इस मैच की हम बात करें फिर से एक बार फिर, तो इंग्लैंड के अभी तक के अभियान में जो है वो कंसिस्टेंसी लगातार दिखी है. दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ भी मैच बड़ी मुश्किल से उन्होंने जीता, भारत के खिलाफ भी कांटे का उनका मुकाबला रहा, तो आज के मैच में आपको क्या लगता है कि कंसिस्टेंसी कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है?
1: ये दो मैचेस उनको तैयार भी किए होंगे. एक टफ मैच जो सेमीफाइनल होता है उसके लिए शायद इंडिया का मैच या बांग्लादेश का मैच उनको तैयारी में मदद की होगी, लेकिन उसमें से कितना सीख लिए हैं और फिर आज उसमें सुधार कितना ला सकते हैं अपने गेम में,

0: खास करके उनके बल्लेबाजी में। दे हैव टेकन अ चांस पहले गेंदबाजी करके, उन्हें लगता है कि इंग्लैंड को अगर कम स्कोर में रोक लें तो उनके बल्लेबाज मैच जिता सकते हैं। अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं फिर यू कम अंडर प्रेशर टू विन द मैच टू डिफेंड द स्कोर, तो उनके जो बल्लेबाज है वो मैच जिताना चाहिए उनको। क्या वो आज हो सकता है ये देखने वाली बात है। इंग्लैंड के पास सारे वो पत्ते हैं, दे हैव गॉट इनफ एंड मोर ट्रम्प कार्ड विद देम, लेकिन साउथ अफ्रीका को चाहिए कि अपने बल्लेबाज आज कुछ करिश्मा कर दिखाएं।
1: And Khyati, talking about South Africa's bowling, we talked about the 25 wickets that the Pacers have taken, including Shabnam Ismail, who reversed her retirement to come back and play in the T20 World Cup. She's an experienced campaigner. How would you assess her comeback thus far?
2: So definitely, I mean, it's a very good decision, I would say, because their team is at their best at the moment. And there are chances they can lift the trophy as well. And because if you have seen their past performances, they have done really well. And it's a good decision because now the team looks very balanced and packed. And the three bowlers like Ismail Khan and the other as well, they're doing really well. And it's a very good balanced pacing attack. And I'm sure that she will definitely put an effort to lift this trophy for her team.
3: आज जिशान फिर से जो है बल्लेबाजी करने का मौका पहले इंग्लैंड की टीम को मिला है। टॉप ऑर्डर उनका बहुत कमाल का प्रदर्शन कर रहा है और एक तरह से माना जा रहा है कि इंग्लैंड के टॉप थ्री बल्लेबाज और उधर साउथ अफ्रीका की जो फास्ट गेंदबाजी है उनके बीच कांटे का मुकाबला होने वाला है। ऐसे में इंग्लैंड क्या स्कोर करे कि थोड़ा सा अपने आप को

0: ज़रूर से आगे की तरफ वो टीम जो है बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड ये सोच करके आई होगी कि हमें छः शुरू के 6 ओवर में अगर 40-45 भी रन बनते हैं तो वो उतना बनाएं, विकेट ना गिरने दें, सो डेट के बाद के जो ओवर्स होंगे उसमें जब बॉलर कोई दूसरे नए आएंगे उनकी तरफ से बॉल डालने के लिए, तो वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फिर आगे हिट करके और 150-160 के आसपास स्कोर अगर लेकर के जाने की कोशिश करेंगे, टारगेट होएगा तो वो बेहतर होगा इंग्लैंड के लिए। मुझे यकीन है कि इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप मैं देख रहा हूँ, उनकी परफॉर्मेंस जो थ्रू आउट जो सीरीज़ में देखा है मैंने, तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा स्कोर खड़ा करने में कामयाब होंगे। लेकिन ये ज़रूर है, क्रिकेट है, आपको थोड़ी सेंसेबल बैटिंग करनी पड़ेगी आज के दिन में, इसलिए कि ये बड़ा मैच है सेमीफाइनल। सेमीफाइनल में अगर आप थोड़े से भी लैक किया, ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आपने आपको लेकर के आएंगे तो भी मुश्किल होएगी। तो मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रैटेजी बना के आएंगे और ज़रूर से एक ऐसा स्कोर खड़ा करेंगे जो अफ्रीका के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होएगी।
1: और राजा, फील्डिंग की आज कितनी बड़ी भूमिका रहने वाली है? साउथ अफ्रीका का जो स्टैंडर्ड होता है फील्डिंग

0: इस पूरे वर्ल्ड कप में दिखा नहीं है, उसकी कितनी बड़ी भूमिका होगी आज?
1: बहुत बड़ी होगी। कोई भी मैच में, क्रिकेट का कोई भी मैच, मोहल्ले का मैच हो या आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप हो T20 का, फील्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये शायद भारत के टीम को बहुत बुरी तरीके से पता चला होगा इस टूर्नामेंट में कि देयर फील्डिंग वॉज नॉट अप टू स्क्रैच, और क्योंकि साउथ अफ्रीका कैन सेव एटलीस्ट 10 और 15 रन्स, देयर विल बी अ गुड एडवांटेज फॉर देम। काफ़ी फिट टीम है,
2: trauma experts, but thanks a lot for your analysis as well. Thank you, Dharmendra. So it is going to be England's formidable top order that will be up against the pace attack that has picked up 25 wickets. Wrap up our show here at First Ball 20.

0: आज क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप श्री अमल एंटनी द्वारा प्रस्तुत मलयालम सुगम गीत सुन रहे थे। इन गीतों के बोल श्री रफीक अहमद ने लिखे थे तथा संगीत श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिए थे। उनके साथ संगत कर रहे थे श्री विल्सन केएक्स कीबोर्ड, श्री बाबू वर्गीस रिथम पैड, श्री सीएनके मूर्ति बांसुरी तथा श्री सी श्री कुमार तबला। उसके साथ ही आज का क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का समापन होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी त्रिशूर केंद्र में रिकॉर्ड किया गया था। यह प्रसारण आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया।
1: इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक यू वेर लिसनिंग टू अ प्रेजेंटेशन ऑफ मलयालम लाइट सॉन्ग्स बाय श्री अमल एंटनी। The songs have been written by Sri Rafiq Ahmed and composed by Sri T. S. Radhakrishnan. He was accompanied by Sri Wilson K. X. on keyboard, Sri Babu Varghese on rhythm pad, Sri C. N. K. Murthy on flute, and Sri C. Sri.
2: Of today's national program of regional folk and light music. This program was recorded in the studios of Akashwani, Thrissur. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
3: Namaskar. Akashwani Samachar ke saath, main Bhavtarini. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ

0: होगा।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे
2: टीम में अन्य खिलाड़ी हैं। जैसा हमने बताया था, नैट सेवरब्रन टीम का नेतृत्व कर रही हैं। ऑलराउंडर हैं एलिस कैप्सी, जो कि बैटिंग ऑलराउंडर हैं। हेदर नाइट बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी। डेनिविया थॉज जो 165 पारियां खेल चुकी हैं, 3651 रन उनके नाम पर दर्ज हैं और 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट तो आज की तारीख में सामान्य बात है T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में। साउथ अफ्रीका के लिहाज से शबनम स्माइल का टीम में शामिल होना एक खास बात कही जा सकती है, लेकिन गेंदबाजी की कमान संभालेंगी मैरिजन कैप, जो कि 126 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेल चुकी हैं, 100 विकेट उनके नाम पर दर्ज हैं और इकोनॉमी रेट है 5.5 का। बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी दोनों ही टीमों में शामिल हैं। कुछ बहुत ही एक्साइटिंग यंग टैलेंट भी है दोनों टीमों में। और इंग्लैंड की टीम के बारे में हम बात कर रहे थे, फ्रेया कैम जो कि ऑलराउंडर है, डैनी गिब्सन बॉलिंग ऑलराउंडर, चार्ली डीन बॉलिंग ऑलराउंडर, सोफी एक्लेस्टन जो कि स्पिन गेंदबाजी में अपनी महारत हासिल करती हैं, लिंसे स्मिथ जो कि गेंदबाज हैं और लॉरेन बेल जिनसे खासी उम्मीदें होंगी, एक और खिलाड़ी जो कि जिन पर काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। और मैरिजन कैप आ रही हैं दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, पहली गेंद उनकी ऑफ स्टंप के बाहर, हल्का सा पिच करके थोड़ा सा मोमेंट हवा में दिख रहा है, हालांकि नोटिसेबल इसलिए नहीं क्योंकि ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर गेंद थी और उस पर खेलने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया बैटर ने। इस मैच के जो एम्पायर हैं, जिनके बारे में ऑफकोर्स प्रोग्राम में भी जिक्र हुआ था, एलॉय शेरिडन और जैकलिन विलियम्स, बहुत ही अनुभवी दोनों एम्पायर्स। तीसरे एम्पायर हैं क्लेयर पोलोसाक और रेफरी हैं ट्रूडी एंडरसन। जैकलिन विलियम्स अपने 95th T20 इंटरनेशनल मुकाबले में सुपरविजन कर रही हैं। एक स्लिप के साथ गेंदबाजी की जा रही है मैरिजन कैप के द्वारा। ऑफ साइड का कॉर्डन पूरी तरीके से पैक्ड है, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, ऑन साइड में खेला है उसे, हालांकि खेलना शायद ऑफ साइड में चाहती थी। गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, स्क्वायर लेग अंपायर के दाहिनी ओर पहुंची है, तब तक आसानी के साथ छोर बदल लिया दोनों बैटर्स ने और इसके साथ ही स्कोरिंग का सिलसिला इंग्लैंड की ओर से शुरू हो चुका है। तो टॉप ऑर्डर में एमी जोन्स, डेनिविया थॉज और नैट सेवरब्रंट शामिल हैं, एलिस कैप्सी, हेदर नाइट, फ्रेया कैम जिनके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। चूंकि पावर प्लेज हैं तो दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर तैनात हो सकते हैं, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर और एक डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है। डेनिविया थॉज जिनके बारे में जतिन सूद जानकारी दे रहे हैं इससे पहले कि इस बार ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा उछाल भी और खेलने का प्रयास तो किया था एमी जोन्स ने, गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं। डेनिविया थॉज ने इस विश्व कप में 282 रन बनाए हैं 5 पारियों में, 94 का औसत है, हाईएस्ट जो उनका स्कोर है, सर्वोच्च स्कोर है 105 रन नाबाद। तो आज एक वाइटल कॉग होंगी अपनी टीम की बल्लेबाजी में डेनिविया थॉज, लेकिन फिलहाल स्ट्राइक पर वो ही हैं, स्कोरिंग का सिलसिला उन्होंने भी शुरू किया नहीं है। बैकफुट पर जाकर कट करने की कोशिश है, हल्का सा उछाल मिल रहा है, हल्का सा मोमेंट भी है हवा में, हल्की सी लहराती हुई सी गेंद आ रही है। हालांकि इस पिच के बारे में कहा यह जा रहा था कि यहाँ पर बल्लेबाजी में कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए, पिछला मैच तो लो स्कोरिंग रहा था, जो एक वन वे ट्रैफिक था जिसे ऑस्ट्रेलिया ने बड़े प्रभावशाली अंदाज में जीता, वेस्टइंडीज को हरा करके 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और 1 बार के चैंपियन वेस्टइंडीज बाहर हो चुके हैं, भारत भी बाहर हो चुका है। 2017 में जब इंग्लैंड ने खिताब जीता था भारत को ही पराजित किया था, इस बार धीमे से पंच किया था ऑफ साइड में, 1 रन लिया गया है, दूसरा रन भी लेना चाहती हैं बैटर, लेकिन फिलहाल रन लेने की कोई संभावना नहीं।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said, Both the sides today decided to make the partnership

0: full-length dive towards her left, yet the ball was out of her reach. It ends up being a wide plus four.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: So wide plus four, that is not what South Africa would have intended. Anyhow, back on the top of her mark is Shabnam Ismail, bowling to Danny Wyatt-Hodge. Delivers this one on a good length and a bottom edge, takes the ball to the boundary once again. Four more.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: Ismail has a grimace on her face, a wry smile on her face. What can she do about this? It was on a good length, outside the off stump, but not too wide to be very fair to her. Danny Wyatt-Hodge went for the cut shot, realized that it was probably a little too close to cut, but before that, she was already into the shot. The ball hit the bottom edge, went into the turf and bounced so high that Sinolo Jafta had no chance. The ball went behind the keeper and fetched Wyatt-Hodge a boundary. Next delivery. This has once again been placed with deft hands and a big dive from Nadine de Klerk at the deep backward point boundary might have been able to save a couple of runs for South Africa, albeit it will be the umpires who are going to check and confirm that this was delivered on a good length outside the off stump. Wyatt-Hodge prodded towards it, however kept her bat very close to the body and opened the face of the blade as she played it with soft hands. Nadine de Klerk, who was stationed in the deep, had to run towards her left and then put in a big dive to try and push the ball away from the boundary cushions. Has she been able to do that well? That is the question, and that is what TV umpire Claire Polosak is checking. Did she come in contact with the boundary cushions and the ball at the same time? That is the question that is currently being inspected. The replays on our monitor suggest that she has indeed come in contact with the boundary cushions, but is it at the same time when the ball was also in contact with her? Multiple angles are being viewed, because remember, this is a World Cup semi-final. Sometimes it can come down to a run or two to decide who the winner is, and therefore the umpires want to be very sure. After going through a bazillion replays, they've decided to give it as two runs. So well done, Nadine de Klerk, you have saved a couple of runs for your team. Anyhow, Wyatt-Hodge prepares to face what will be the last ball of the second over. The slip fielder has moved a little bit wider, and once again it's a bottom edge which takes the ball towards backward square leg. The keeper runs towards her left, picks it up and throws it at the striker's end. She doesn't hit the stumps and that allows the batters to cross over for a single. It was a good length delivery, angled in towards the stumps. Wyatt-Hodge was looking to work it towards the offside but got a thick bottom edge which allows a single. 20 for 1 after 2.
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: तो दोनों टीमों की ओर से अपने अपने हिसाब से अच्छी शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि शबनम स्माइल जब आई तो उन्होंने अपने स्पेल की शुरुआत के पहली ही गेंद पर विकेट हासिल किया, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये जो पिछला ओवर था उसमें 16 रन बनाए गए इंग्लैंड के बैटर्स के द्वारा। तो इस बार स्टेप आउट किया है, हाफ वॉली पर लेकर ड्राइव है, लेकिन लॉन्ग ऑफ की दिशा में, मिड ऑफ की दिशा में इनफैक्ट फील्डर मौजूद हैं। मैरिजन कैप आई हैं नया ओवर लेकर के। रन रेट, रन बनाने की रफ्तार 9.23 है और पिछला ओवर अच्छा खासा प्रोडक्टिव साबित हुआ। डैनी वियाट-हॉज कुछ मिसक्यूड शॉट्स भी थे उनके बल्ले से निकले, लेकिन यहाँ सिर्फ मायने ये रखता है कि आपके खाते में रन कितने आ रहे हैं और विकेट अगर बचे हुए हैं तो फिर उसे सोने पर सुहागा कहा जा सकता है। 20 रन एक विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद बोल्ड हो गई है, बेहतरीन कामयाबी, डैनी वियाट-हॉज को आउट कर दिया है, बोल्ड कर दिया है। कट करना चाहती थी, ऑफ स्टंप की लाइन में बॉल थी और देखना पड़ेगा कि क्या गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ था। लगा तो ऐसा कि डायरेक्ट इंपैक्ट था स्टंप्स के ऊपर, लेकिन मैरिजन कैप जो कि एक ब्रेक थ्रू देने के लिए जानी चाहती हैं, उन्होंने डिफेंस को पियर्स कर दिया। गेंद और बल्ले के बीच में काफ़ी, इनफैक्ट बैट और पैड के बीच में अच्छा खासा फासला था और इंग्लैंड को लगता हुआ ये जोर का झटका 2.2 ओवर के बाद 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर।

0: good length delivery, which after pitching, jagged back in sharply. And that inward movement is what caught Danny Wyatt-Hodge off guard. She has done very little wrong throughout this tournament. 294 runs in totality in this tournament, which includes a century, includes a couple of half centuries. And even here, she had started off in good manner. She had already hit a couple of boundaries in the previous over. However, Marizane Karp, the heartbeat of this South African team, delivers a telling blow once again. Danny Wyatt-Hodge has now been replaced by Alice Capsey in the middle. So Capsey and Natsiva Brunt out there in the middle. And this is where I think we need to have a conversation about Sophia Dunkley. Remember, Sophia Dunkley came in as the injury cover for Natsiva Brunt and scored a 49 not out in the previous game, which was played at this very ground. Before that, she got a 50 as well in one of the group stage matches, but she was dropped from the team today so that they could get Siva Brunt in. Alice Capsey, who hasn't really done anything extraordinary in this World Cup, is now in the middle and has responsibilities on her shoulder. She gets beaten on the first ball by a lovely outswinger delivered on a good length outside the off stump, and tried to poke at it, did Alice Capsey, only to watch the ball whiz away from the outside edge of her bat.
1: बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं मैरिजन कैप, और उन्होंने बहुत ही अहम सफलता दिलाई है दक्षिण अफ्रीका को. इनफैक्ट एलिस कैप्सी को उनकी जो पहली गेंद थी, स्लोअर डिलीवरी थी वो, और उसको खेलने के प्रयास में पूरी तरीके से चूकी थी मैरिजन कैप. ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और विकेट के पीछे उसे गैदर किया गया. रन बनने की कोई संभावना नहीं. तो दो झटके पावर प्ले में, जहां बात होती है कि विस्फोटक बल्लेबाजी होती है, ताबड़तोड़ बैटिंग का नज़ारा हमें देखने को मिलता है आज की तारीख में T20 क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में या फिर क्लब क्रिकेट में भी, और बड़े से बड़े स्कोर बनाए जाते हैं 20-20 ओवर के मुकाबलों में. और यहाँ पर एक कहा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वॉलवर्ट ने जो टॉस जीता, वो टॉस बहुत ही अच्छा जीता उन्होंने, और पहले उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया. अभी तक तो वो निर्णय सही साबित हुआ है. अगली गेंद इस बार स्टेप आउट करके धीमे से ऑन साइड में नैटसिवर ब्रंट ने पुश किया था बॉल को. जब तक फील्ड किया जाए, छोर बदल लिया दोनों बैटर्स ने. तो पिछले ओवर में 16 रन खर्चे गए, लेकिन ये ओवर बिल्कुल शांत अंदाज में आगे बढ़ता हुआ. और डैनी वियाठौर जैसे बता रहे थे, दर्पण के 294 रन उन्होंने बनाए हैं. और ये अलग बात है कि आउट होकर के आज जल्दी ही पवेलियन लौट गई हैं, लेकिन अपनी टीम की ओर से दो उन्होंने अर्धशतक जमाए थे और एक शतक भी जमाया था इस टूर्नामेंट में आज. लेकिन बल्ले से कोई खास योगदान वो नहीं दे सके. इस बार मिडिल लेग स्टंप की दिशा में गेंद थी, बैकफुट पर जाकर धीमे से पुश किया है. हालांकि फील्डर्स डीप में तैनात थे और शॉट मिड विकेट की दिशा में इनफैक्ट कोई फील्डर था नहीं, तो एक रन लेने में कामयाबी. इसके साथ ही मैरिजन कैप का एक बहुत ही शानदार ओवर समाप्त होता हुआ.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
0: 7 dot balls in the first couple of overs that Marizane Kapp has delivered, and more importantly, the big wicket of Danny Wyatt-Hodge. An interesting thing that I noticed, Shivendra, was the fact that a couple of batters stepped out. We'll talk more about it. There's an appeal for LBW. However, it has been turned down by umpire Jacqueline Williams, who shows absolutely no interest. It was probably sliding down the leg side. Shabnim Ismail, the bowler who ran in over the wicket, delivered this one on a good length, and the ball beat the inside edge of Siva Brunt's bat and hit her pad. Interestingly, Laura Wolfart shows the tee. She decides to use DRS and take this upstairs. Now, the reason why we are surprised is because to the naked eye, it seemed as if the ball would have gone down the leg side. But two things to be kept in mind. First of all, the umpires are obviously much more experienced, and therefore you tend to judge, tend to trust their judgment. More importantly, I think what has pushed Laura Wolfart or persuaded Laura Wolfart to take this review is the fact that the batter in question is Natsiva Brunt, one of the most consistent performers throughout the world. And therefore, they want to get her out. And therefore, they have decided to take the review. The first replay shows us that there is no...

0: involvement of Bat, Ultra Edge shows a flatline, and the ball tracker confirms exactly what we suspected. The impact is down the leg stump. It is down the leg side. So it's a horrible review. But Shivendra, I feel the only reason why they went for it is because the batter in question is Sivabrant.
1: जो भी फैसला था मुझे तो लगा इट इज वेल टेकन दर्पण, बिकॉज जैसे आप कह रहे हैं कि वो जो खिलाड़ी क्रीज पर थी वो बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं, और साउथ अफ्रीका वो जो इम्पैक्ट जो उन्होंने क्रिएट किया है अपनी गेंदबाजी से उसको वो और कंसोलिडेट करना चाहते हैं, और चांस लेने में कोई बुराई थी नहीं। अगर विचार विमर्श के बाद ऐसा लगता है कि हम जा सकते हैं रिव्यू के लिए, और रिव्यू बना ही इसीलिए है, कोई बात नहीं। अगर वो लॉस्ट भी हुआ तो भी कोई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई गलत या बहुत खराब डिसीजन था।
0: A leg by was also stolen, by the way. Next delivery from Shabnam Ismail. Another shout for LBW. This time Jacqueline Williams raises her finger. So does Shivendra in the commentary box of Akashvani. This looks plum. However, Alice Capsi now has the opportunity to use DRS. She walks down 22 yards, has a conversation with her captain at the other end, who shakes her head. That means Alice Capsi will have to turn around and take the long walk back. Shabnam Ismail has picked up another wicket. England have lost 3 in 3.2 overs. They are struggling. They are huffing and puffing. 23 for 3. South Africa in the driver's seat.
1: इससे बेहतरीन शुरुआत और क्या हो सकती थी साउथ अफ्रीका के लिए। शबनम इस्माइल, जैसा हमने कहा था कि उन्होंने अपने स्पेल की शुरुआत आज जब वो रिटायरमेंट से वापस आई हैं इस महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के लिए, और उनके लिए आज के सेमीफाइनल में डिलीवर करना कितना ज़रूरी था ये उनसे या उनके टीम प्रबंधन से ज़्यादा बेहतर और कोई समझ नहीं सकता। और एलिस कैप्सी जो कि अभी अभी आई थी, 4 गेंदों में 1 रन बनाकर के पवेलियन वापस लौट गई हैं, और शबनम इस्माइल जिन्होंने T20 विश्व कप में अपने 50 विकेट पूरे किए थे, अब वो 51 की शुभ संख्या पर पहुंच गई हैं। और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में अभी तक का रिकॉर्ड अगर देखा जाए, नज़र डाली जाए, तो 28 मैचों में 23 मैच इंग्लैंड ने जीते हैं और 4 मैच सिर्फ साउथ अफ्रीका ने जीते हैं। आज लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआत में जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है टॉस जीते के बाद पहले गेंदबाजी करते हुए, वो शायद फिलहाल तो इस ओर इशारा कर रहा है कि पलड़ा कागज पर भले ही मैच के शुरू होने के पहले दर्पण इंग्लैंड का भारी था, लेकिन इस समय हालात बदल चुके हैं।
0: Heather Knight is the new batter. More on her after this ball. Runs in to deliver this one on a good length. Does Shabnam Ismail. The ball hones in towards the off stump, but in a very careful, cautious, watchful manner, presents a stubborn full face of the bat. Does Heather Knight and blocks this one. Heather Knight is a cornerstone of this English team. Remember back in 2017 when they won their last ICC trophy, she was the captain when England lifted the 50-over World Cup in 2017 after breaking a billion Indian hearts. We'll talk about it. Next delivery, full in length, around the off stump, presses forward, does Sivabrant and then unleashes, beg your pardon, Knight presses forward and unleashes a deft glance towards deep square leg, picks up a comfortable single, and that takes the score to 24. 24 for 3 after 3.4 overs. Talking about Knight, Knight was their captain back when England won the last World Cup, and now an interesting replay on our monitors, Shivendra. Looks like Ali Scapsi had got an inside edge. More about it after this ball. Good length delivery. Sivabrant presses backwards, allows the ball to come close, and then dinks it back to the bowler. Ali Scapsi, who was trapped LBW a couple of balls ago, had got an inside edge. And I wonder why she did not review it. She did walk to her partner at the other end and had a discussion. But if you are the batter, you would have felt that there was an inside edge, especially at the pace at which Shabnam Ismail is bowling.
1: इसीलिए कई बार कहा जाता है कि आपके लिए स्किलफुल होना तो जरूरी है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से टफ होना भी जरूरी है। बढ़िया शॉट है इस बार, नेट सिवर भंड के बल्ले से निकला है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: Right, and that also brings us to the end of the fourth over. 28 for 3 are England. They are in trouble, and the reason why we say in trouble, Jatin Sood gives us another piece of information which confirms it. This is the second time in this World Cup when England women have lost 3 wickets in the power play. The only game where they lost

0: 3 in the power play was against Ireland, where they were 35 for 3 in 6 overs, and Ireland did give them a run for their money. However, two interesting things have happened. First, Ali Skapsi, despite getting that big, thick inside edge, did not review it. Otherwise, her LBW decision would have been overturned. The second thing is that Sophia Dunkley, who otherwise would have been playing in the situation, is not a part of the 11. Marizan Kapp begins what is her third over in the power play, delivers the first delivery on the fuller side of good length. Heather Knight lunges forward and wads it off into the cover region. No runs to be had on that occasion. The reason why I'm talking about Sophia Dunkley is because she was in good form. She comes across that kind of a player who has the big match temperament, who tends to counter-attack and throw the pressure back on the opposition. And she was dropped out of the 11 today. And Ali Skapsi, therefore, must have had that added pressure on her because she hasn't had a big score in this tournament yet. She was not able to deliver. The next delivery is down the leg side. Heather Knight tried to walk out of her crease, which we have seen on a couple of occasions even before this. Even in last over of Marizan Kapp, we saw the batters trying to step out of their crease and trying to throw her off her length because she's getting some movement. However, this delivery did not swing and ended up down the leg side, became a wide ball. The next delivery, this time Heather Knight stays rooted to her crease. However, the ball is full enough for her to get a good stride out. It is outside the off stump. She presses forward and then uses soft hands to ward the ball off into the cover point region. 4.2 overs done. 29 for 3 is the score currently. And South Africa, we believe, are in the driver's seat.
1: Definitely South Africa is in the driver's seat as far as this semi-final is concerned. Or jo gendbazi unki team ki ओर से हुई है और आउटफील्ड में भी बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहा है सभी खिलाड़ियों का अभी तक. तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां इस समय साउथ अफ्रीका के पक्ष में जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि तीन जो टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं वो पेविलियन में विश्राम कर रहे हैं. शबनम स्पाइल ने इस बार उनके बाई ओर गेंद आई थी, हालांकि वो राइट हैंडर हैं, बाई ओर डाइव लगाई उन्होंने और सुनिश्चित किया कि गेंद को रोक लें. लेकिन इसी क्रम में कई मर्तबा ऐसा होता है कि खिलाड़ी इंजर्ड भी हो जाते हैं. थोड़ी सी मुश्किल में दिखी थी, लेकिन फिलहाल खड़ी हो गई हैं अपने स्थान पर. 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड का स्कोर है 4.3 ओवर की बल्लेबाजी के बाद. शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद है, स्टेप आउट किया था जेवर ब्रेंट ने. बड़े ही प्रभावशाली, बड़े एकाधिकार के साथ बल्लेबाजी करती हैं, बड़े कमांडिंग अंदाज में बल्लेबाजी करती हैं. और इस बार एक लेग बाई का इशारा किया है जैकलिन विलियम्स ने. इस्माइल, जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, लगातार 51 विकेट ले चुकी हैं T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में. मेगन शर्ट के नाम पर 48 विकेट हैं. एलिस पेरी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, 44 विकेट. आयना शपसोल, जिनके नाम पर 41 विकेट हैं. और मैरिजन कैप 39 विकेट लेकर के पांचवें पायदान पर हैं T20 इंटरनेशनल में. वर्ल्ड कप में जो लीडिंग विकेट टेकर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं. इस बार पैड के सहारे खेल आए डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में. आसानी के साथ एक रन मिलेगा. जो दूसरा ओवर था उसमें 16 रन बनाए गए थे इंग्लैंड के बैटर्स के द्वारा, लेकिन उसके बाद से ऐसा लगा कि परिस्थितियां यकायक बदल गई. हालांकि तब भी एक विकेट गिर चुका था. एमी जोन्स आउट होकर के पेविलियन वापस लौट चुकी थी. तब रन बनाने की रफ्तार 9.34 के आसपास थी. इस समय रन बनाने की रफ्तार है 6.62 रन प्रति ओवर. ओवर की आखिरी गेंद लेकर के आई थी मैरिजन कैप. ऑन साइड में खेला गया है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर प्रोटेक्शन है. एक रन मिलेगा. जब तक थ्रो आएगा तब तक दोनों बैटर छोर बदल लेंगे. पांच ओवर के बाद स्कोर 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
0: So the first quarter of the first innings of this semi-final has belonged to South Africa. Marizan Kapp has completed her spell. She has delivered 3 overs in which she gave away only 9 runs and picked up the all-important wicket of Danny Wyatt-Hodge. 9 out of the 18 deliveries she sent down were dot balls. So once again, 50% dot balls. 33 for 3 England after 5 overs, and looks like Shabnim Ismail is going to be given a third over in the power play as well. Remember, this is exactly exactly what they did against Australia too in the first match and were criticized for it. However, Shabnam Ismail creates another opportunity. There's a big, big appeal for LBW.

0: German shout. However, umpire Jacqueline Williams is unmoved. Laura Wolfart walks up to her bowler. Chloe Tryon joins the confab. So does Nadine De Klerk. They are having a discussion, and by the looks of it, I think it was Chloe Tryon who ran in from mid-off, who suggested that the ball was a little too high and therefore we should not take the review. But once again, we saw that Wolfart was entrusted because the batter in question was Nat Sivabrant. She moved back and across to stand on the off stump, and this delivery was on a good length. However, it generated some extra bounce and hit her not on the pad but on the thigh guard. Next delivery, this time alters her length. Does Shabnam Ismail delivers it on a full length in line with the middle stump. The batter presses forward and dinks it back towards the bowler. Ismail quickly moves towards her right to clean it up, and an interesting reading on the speed gun, 118 kilometers per hour, which is pretty quick as far as women's cricket is concerned. The ball tracker replay is on our monitors and it tells us that whatever Chloe Tryon was suggesting was indeed correct. The ball was indeed high and would have missed the stumps. The next delivery, it's a short delivery from Shabnam Ismail. The perfume ball, as they call it, not too far from the off stump. Sivabrant did shape up for a pull shot. However, the ball went whistling past her face, and in the end she had to bail out. Three dot balls to start the final over of the power play. England struggling. Nat Sivabrant not quite able to find her mojo. 33 for 3 is the score after 5.3. Three balls remaining in the power play.
1: तीन डॉट डिलीवरीज शबनम स्माइल के बारे में उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है. इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, खेलना चाहती थी ऑफ साइड में. नैट सिवरब्रांड बिल्कुल स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही हैं. ऐसा कितनी बार आपने सुना या देखा होगा कि उनके जैसे कैलिबर की बैटर, उनके जैसे कैलिबर की खिलाड़ी, और वो संघर्ष करती हुई नजर आ रही हो, और उनकी टीम के तीन टॉप बैटर्स पावर प्ले में ही पवेलियन में विश्राम कर रहे हो. आज सोफिया डंकली को मैच से बाहर किया गया, टीम से बाहर किया गया, क्योंकि नैट सिवरब्रांड जो कि टीम की कप्तान है और वो स्वस्थ होकर के, फिट होकर के मुकाबले में वापस आई हैं. आज उनके कंधों पर दोहरी तेहरी जिम्मेदारी है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा. एक बार ऑन साइड में, इस बार मिडल और लेग स्टंप की दिशा में थी गेंद, मोड़ा गया है. एक रन से संतुष्ट होंगी. तो चार डॉट डिलीवरीज के बाद एक सिंगल आया है. इस पावर प्ले का अब अगर कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती तो सिर्फ एक गेंद फेंकी जानी शेष है. 5.5 ओवर की बल्लेबाजी के बाद इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 34 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पर. साउथ अफ्रीका विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबलों में जो कहानी रही है इंग्लैंड के साथ, खासतौर पर सेमीफाइनल में जब 2014 में 9 विकेट से हारे थे साउथ अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उनको 5 रन से हार झेलनी पड़ी थी 2020 में. इसी बीच अगली गेंद खेला गया, उसे बाउंड्री लाइन पर, तब तक एक रन लेने में कामयाबी. 6 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर. ड्रिंक्स का समय है.
2: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
0: 35 for 3 at the end of the power play. England, after being asked to bat first, are in a spot of bother. Amy Jones, Danny White-Hodge and Ali Scapsi, the three batters who have been dismissed. The two most experienced batters of this team now, Nat Sivabrant and Heather Knight, are out in the middle, but both are scoring at a strike rate which is less than 100. Obviously not ideal. However, the situation demands them to be a bit watchful, a little bit circumspect, and it demands them to rebuild the situation. It demands them to steer the ship away from the rocks. Anyhow, Shivendra was telling you about England's record in the T20 World Cup semi-finals, and Jatin Sood has handed me an elongated list which tells me that England made it to the semi-finals in 2009. Of course, that is when they went on to lift the trophy. That's when they defeated their arch rivals Australia by 8 wickets. Then they defeated New Zealand in the 2012 edition. They defeated South Africa in the 2014 edition but lost to Australia in the 2016 edition, won against India in the 2018 edition, and in the 2020 edition the match was abandoned. It was

0: England versus India in the semi-final, and India advanced to the final because they had a better position in the group stage. And then of course the 2023 semi-final where South Africa defeated England. May we add one more entry to that list? I know 2025 was the 50 over World Cup, but it was the more recent one where these two teams met in Guwahati, and once again England suffered a one-sided rubbing. South Africa scored 319 runs batting first. Laura Wolfart scored 169 in that game, and Marizaan Kapp picked up 5 wickets. Here again, what we see is Marizaan Kapp has pretty much wrecked the top order. Marizaan Kapp picked up the wicket of Danny White-Hodge. Shabnam Ismail picked up 2 wickets, and therefore England are struggling at 35 for 3.
1: तो दो जो बैटर इस समय क्रीज पर हैं, दोनों बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, और खासतौर पर अगर नैट सेवरब्रंट का जिक्र किया जाए, नैट सेवरब्रंट इनफैक्ट जापान में उनका जन्म हुआ था, टोक्यो में, और उनकी माता जी वो एक करियर डिप्लोमेट थी और अलग अलग देशों में उनकी तैनाती होती थी। तो बचपन में पोलैंड में रहीं जहाँ पर लीग स्तर पर फुटबॉल खेला, उसके बाद नीदरलैंड में उन्होंने बास्केटबॉल का रुख किया था, लेकिन अंततः उन्होंने क्रिकेट को चुना। 7वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है, मैरिजन कैप अपनी गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, और चौथा ओवर है ये उनका, 9 रन सिर्फ उन्होंने खर्च किए हैं और 1 विकेट हासिल किया है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी हुई है साउथ अफ्रीका की ओर से, और इससे बढ़िया टॉस तो कोई जीता जा ही नहीं सकता था। अभी तक की जो परिस्थितियां हैं उसको देख करके तो ओवल के मैदान पर ऐसा ही लग रहा है साउथ अफ्रीका के जो फैंस हैं वो झूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार मिडल और ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद थी, धीमे से पुश किया है, स्क्वायर थर्ड मैन की दिशा में पहुंची है, 1 रन लिया गया, दोनों बैटर्स ने छोर बदल लिया। और नैट सेवरब्रंट और हैदर नाइट दोनों का अब इस समय प्रयास ये है कि संभल करके बल्लेबाजी की जाए और एक के बाद एक जो झटके लगे हैं टीम को उनसे उभरा जाए, और ख़ासतौर पर ये जो मिडल ओवर्स हैं 7वें ओवर से लेकर के 13-14 ओवर तक, वहाँ पर इंग्लैंड को अपनी जो रणनीति है उसमें थोड़ा सा बदलाव तो करना पड़ेगा, और बदलाव यही होगा कि विकेट को बचा करके रखा जाए, क्रॉस बैटर स्ट्रोक्स या फ्लैम्बॉयंस ज़्यादा ना दिखाया जाए। इस बार गेंद हवा में उछली थी, लेकिन शॉर्ट पॉइंट विकेट की दिशा में फील्डर तैनात थी, लॉरा वॉल्वर्ट थी संभवतः वहाँ पर, गेंद को रोकने में या कैच करने में कामयाबी नहीं मिली। हालांकि डीप से बैकअप था, 1 रन लेने में दोनों ही बैटर्स को कामयाबी, छोर बदल लिया गया। तो धीमे धीमे भाई ही सही, लेकिन इंग्लैंड के खाते में रनों का इजाफा हो रहा है, रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि विकेट्स को बचा करके रखना अब उनकी पहली प्राथमिकता है। 9 रन बनाए हैं नैट सेवरब्रंट ने, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज की भूमिका में है, और हैदर नाइट इस समय यॉर्क करने की कोशिश है, कलाइयों का इस्तेमाल करके फाइन लेग की दिशा में मोड़ा गया है, अयोबंगा खाप का जहां पर मौजूद हैं। गेंद को उन्होंने फील्ड किया, तब तक 1 रन लेने का मौका दोनों बैटर्स के पास, पहली गेंद डॉट डिलीवरी, उसके बाद की 3 गेंदों पर सिंगल्स। लेकिन ये जो इस समय परिस्थिति है उसमें जाहिर सी बात है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम अगर इंग्लैंड के बैटर्स सिंगल के बर ले रहे हैं और स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, उनके लिहाज से एक अच्छी रणनीति कही जा सकती है, लेकिन अगर केवल सिंगल लेने में कामयाब हो रहे हैं तो दक्षिण अफ्रीका के लिहाज से तो बेहतर स्थिति है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक है मिड विकेट की दिशा में, गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है।
2: ये लगा आभा का चौका,
1: थोड़े इंतजार के बाद आया, लेकिन अच्छा आया चौका, मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पर थी, एकदम आगे बढ़ाया, हाफ वॉली पर लिया और बड़ा कमांडिंग प्रभावशाली स्ट्रोक खेला, 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था, हालांकि मिड विकेट की दिशा में फील्डर तैनात थी, लेकिन गेंद उनसे दूर काफी तेज रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। लेकिन कुल मिलाकर के केवल ये चौथा चौका इस बार लेग स्टंप की दिशा में ड्रिफ्ट करती हुई मैरिजन कैप, और क्या पैड से टकराई है या बल्ले से लगी है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन वाइड उसे करार नहीं दिया गया। 7 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर है 42, 3 विकेट के नुकसान पर।
3: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: 42 for 3 after 7 overs are England. And the big news is that Marizan Karp has bowled out her 4 overs. Laura Wolfart gave her the

0: to bowl out Shabnam Ismail just yet. Khaka, who bowls right arm medium, runs in to bowl this one from over the wicket, with the wicketkeeper Sinalo Jofta up to the stumps, delivers this one on a good length outside the off stump, and the batter flays her hands away from the body. The ball hits the bat and then runs towards deep third, where Molaba was stationed before Molaba could pick it up and throw it back to the wicketkeeper. A comfortable single was added to Heather Knight's score. She moves to 7, and England are 43 for 3 after 7.1. Natsivar Brunt now on strike. Here comes Ayobanga Khaka to deliver what will be the second ball of her first over. Delivers this one on a good length. Once again, there is width on offer, and therefore Siva Brunt is allowed to free her arms. She plays it in a deft manner, and the ball goes meandering towards the deep point region, where Tasmin Brits does the fielding and ensures that the batter cannot get more than a single. 44 for 3 then, the score after 7.2 overs. Ayobanga Khaka usually used to take the new ball, but since Shabnam Ismail has come back, she has switched her role to that of a first change bowler. Next delivery outside the off stump opens the face of the plate, does Heather Knight. The timing on that is good enough to beat Malaba in the deep. 4 runs.
1: Ye laga abha ka choka.
0: Delivered on a good length, but once again there was width on offer that allowed Heather Knight to throw her hands at it. She threw an angled face at it, and the timing was good enough to beat Malaba towards her right, running from deep third, and therefore another delectable boundary has been scored. 5 boundaries in the innings so far. Heather Knight moves to 11. The next delivery, and this time she's beaten due to extra bit of bounce. Tell you what, this delivery pitched in pretty much the same spot. Heather Knight shaped up for the same shot, because why not? However, this one, perhaps because it landed on the seam, got up steeply and therefore went over the bat. Good take from Jofta, but that extra bounce surprised Knight.
2: जी हाँ, बिल्कुल यकायक ऐसा लगा कि बॉल में बाउंस अच्छा खासा आया था, और इस बार हालांकि बढ़िया फील्डिंग है अपने बाईं ओर डाइव लगाते हुए डीप में स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री की दिशा में, डेफिनेटली 2 रन तो बचाए गए, हालांकि 2 रन लेने से नहीं रोक सकी इंग्लैंड के बैटर्स को। तो 3 जो गेंदबाज हैं साउथ अफ्रीका की, मैरिजन कैप, शबनम स्माइल और आयाबोंगा खाका, उन्होंने इस विश्व कप में 25 विकेट हासिल किए थे इस मुकाबले से पहले, और जतिन सूद बता रहे हैं कि बेस्ट इकोनॉमी इस विश्व कप में रहा है वो जॉर्जिया वेयरहैम का रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन मैरिजन कैप भी उनसे बहुत पीछे नहीं है। 6 मैचेस में 23 ओवर फेंकते हुए उन्होंने 8 विकेट हासिल किए हैं, और उनका जो इकोनॉमी रेट है वो 5 का है, जबकि जॉर्जिया वेयरहैम का इकोनॉमी रेट है 4.5 का। तो साउथ अफ्रीका ने आज टॉस जीता, दोनों टीमों में एक एक बदलाव। सुनील लुस का आगमन साउथ अफ्रीका की टीम में हुआ है, जबकि इंग्लैंड की टीम में सोफिया डंकले की जगह पर नैटसिवर ब्रंट आई हैं, जो कि इस समय बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही हैं। और इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। डैनी वियर्ट हॉग, एमी जोन्स और एली स्कैप्सी 3 बैटर हैं जो कि पवेलियन में विश्राम कर रही हैं, और 50 रन भी नहीं बने। इनफैक्ट पावर प्ले में 6 ओवर में 35 रन बनाए गए 3 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड की बैटर्स के द्वारा। तो इंग्लैंड का जो टॉप ऑर्डर था, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही थी, आज वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया, और यही कारण है कि मिडल ऑर्डर में नैटसिवर ब्रंट और हैदर नाइक, जो कि बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं और एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही है, 50 रन हो चुके हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए इंग्लैंड के। इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है। मलाबा एक पहले स्पिन गेंदबाजी आक्रमण के तौर पर आई हैं, पहली ही गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने का उपक्रम किया था नैटसिवर ब्रंट ने, और एक रिव्यू वैसे बेकार हो चुका है, क्या पैड से टकराई है गेंद? और जी हाँ, लॉरा वुलवर्ट ने रिव्यू के लिए इशारा कर दिया है, और एम्पायर के पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं कि वो तीसरे एम्पायर के पास जाएं, क्लियर पोलोसाक के पास। एलॉय शेरिडन ने इशारा किया है थर्ड एम्पायर के लिए, और मलाबा अपना स्पेल की ही शुरुआत कर रही थी, हालांकि ऐसा लगा दर्पण कि खुद गेंदबाज बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी।
0: Tell you what, they are desperate to see the back of Natsivar Brunt. Once again, the batter in question is Natsivar Brunt, and that's why Laura Wolfhard was so eager to show the tee, because from where we saw it, it appeared as if there was bat involved. Malaba, the left-arm spinner, delivered this one from around the wicket. The ball drifted in towards the middle.

0: pole, and it pitched on a good length. Siver Brunt loves to play behind square. She is known for those lapse shots, those scoop shots. The nutmeg, where she threads the ball from between her legs, is a very famous shot of hers. She thrives on playing those kind of shots. So her playing the reverse sweep on the first ball doesn't come across as a surprise, but the ball did hit her pad in front of the middle stump. However, we all felt that there was an inside edge before the ball went on to hit the pad. And that is exactly what Ultra Edge has also confirmed. And yes, South Africa have burnt another review. They are now out of reviews. They have used up both their reviews. This will be an interesting ploy going forward.
1: पलावा ओवर की अगली गेंद बैक फुट पर जाकर ड्राइव किया, मिडॉन की दिशा में खिलाड़ी डीप में लॉन्ग ओवर में तैनात हैं। तब तक एक रन मिलेगा। दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला है। रन बनाने की रफ्तार 6.12 रन प्रति ओवर पर पहुंचती हुई 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर, तो 50 रन भी बमुश्किल तमाम आए हैं। और नेट सिवर ब्रंट, हालांकि मलावा को देखने से तो ऐसा लगा कि जैसे वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थी नहीं, लेकिन जैसा दर्पण बार बार इशारा कर रहे थे कि एक जो टेंडेंसी है खासतौर पर लॉरा वुलवर्ट की, इस बार फिर से रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश हैदर नाइट की, और शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में फील्डर तैनात थी, गेंद को उन्होंने फील्ड किया। फील्डिंग आउटफील्ड में बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीय रही है दक्षिण अफ्रीका की अभी तक का जो मुकाबला खेला गया है, और उसमें कहीं पर कोई ब्लेमिश नजर आया नहीं है। और ये दोनों ही जो बैटर हैं, नेट सिवर ब्रंट या फिर हैदर नाइट, वो हेजिटेट नहीं करती अनकन्वेंशनल गैर परंपरागत स्ट्रोक्स खेलने में। जो जेन्युइन ऑथेंटिक क्रिकेटिंग शॉट्स हैं, इस बार स्क्वायर लेग एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को खेला गया था, डीप में प्रोटेक्शन था, एक रन लिया गया दोनों बैटर्स के द्वारा। पहली गेंद डॉट डिलीवरी, उसके बाद की तीन गेंदों पर, पहली गेंद वो थी जहां पर रिव्यू लिया गया था साउथ अफ्रीका की ओर से, और वो रिव्यू बेकार गया, यानी उनके दोनों ही रिव्यू बेकार हो चुके हैं। और मलावा की अगली तीन गेंदों पर एक एक रन लेने में कामयाबी मिली है, तो इनिंग्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश हो रही है नेट सिवर ब्रंट और हैदर नाइट के द्वारा। चार खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, इस बार हाफ वॉली पर लेकर फाइन लेग की दिशा में खेला गया है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका,
1: तो बढ़िया चौका लंबे अंतराल के बाद आता हुआ इंग्लैंड के खाते में, हैदर नाइट के खाते में जाएगा ये, और अपनी टीम के लिए उन्होंने 4 आकर्षक रन जोड़े हैं। हालांकि डीप में फील्डर तैनात थे, ऑन साइड में इनफैक्ट 3 खिलाड़ी हैं जो कि बाउंड्री लाइन पर तैनात हैं। इस बार मलावा की अच्छी वापसी, मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद जरूर थी, धीमे से पुश किया और इसको भांपते हुए कि खिलाड़ी डीप में थे, एक रन लेने में कामयाबी। 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 9 ओवर के बाद इंग्लैंड ने बनाए 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: Folks, this is an important stage in the game. Don't go away from your radio sets, because the upcoming phase might as well decide which way this match will go. Why are we saying that? I'll tell you that in a bit. Nadine de Klerk, meanwhile, has been given the ball in hand. She bowls right arm medium. It will be interesting to see if she tells the keeper to stand on the stumps, or does she tell her to stand back? No, she has asked Sinolo Jofta to be on the stumps. They want to keep Heather Knight in her crease. Now remember, this is a partnership which is brewing. 36 runs have been added by Siver Brunt and Heather Knight. And the reason why I say that the upcoming phase is going to be important is because I sense that both the batters have got their eye in. The first delivery from Nadine de Klerk from over the wicket ends up straying onto the pads. It was delivered on a good length. However, since it was on the pad line, it allowed Heather Knight to use her wrists to turn the ball towards deep backward square leg, where Marizan Kopp did the fielding. A single was comfortably taken. 59 for 3 England after 9.1 overs. They will be looking to attack. The second important thing to note is that Kopp is now done. Ismail is now out of the attack. And therefore, now you are looking at the second string of bowlers. And there we go. There comes the attacking shot from Nat Siver Brunt. And it gets her a boundary.
2: ये लगा आभा का चौका।

0: Natsiva Brunt's third boundary, and probably the most convincing of them all, a tad shorter than the previous one, and that was all that Siva Brunt required. She picked it from in front of the off and middle, didn't quite go on to the back foot. She stood on the front foot and swished her bat across the line with vehemence. The ball went scampering away and bisected the gap between deep backward square leg and deep midwicket. Let's see what Nadine de Klerk's response is going to be. She responds by trying to dart the ball into the block hole. However, Natsiva Brunt has been able to dig it out and play it towards deep midwicket. And before the fielder over there can converge, pick the ball up, throw it back to the 22-yard playing strip, two runs have been taken. Yes, the oval has big pockets, but watch out for Natsiva Brunt's running. This is what she thrives on. She loves to hair between the wickets, and that is exactly what she exhibited on that occasion. Now, backs away to the leg side. This is delivered on a good length at the middle stump, and Natsiva Brunt brings out the short arm pull to play it towards deep midwicket, where once again Anuri Dirksen does the fielding. A single has been added. That takes England's score to 66 after 9.4 overs at the loss of 3 wickets. Suddenly, can you sense that urgency that Natsiva Brunt and Heather Knight are showing in their running between the wickets? This is exactly what I was talking about. They are now looking to up the ante against the second string of bowling. Next delivery on a drivable length outside the off stump, and the Heather Knight lunges towards it and then plays a deft drive, a measured drive towards deep cover. A comfortable single this time has been taken, taking the score to 67 after 9.5. So, in the next 4-5 overs, we are going to see a lot of it, and therefore South Africa have to be on their toes. Next delivery on a full length at the middle pole has been whipped away towards the right of long on, and Shabnam Ismail moves quickly to keep them down to a single. 10 overs are done. 68 for 3.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: 2026 का T20 विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया जा रहा है और टूर्नामेंट अपने बिजनेस एंड में पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा करके फाइनल में जगह बना ली है और आज दूसरा सेमीफाइनल ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पर दक्षिण अफ्रीका का सामना इंग्लैंड से हो रहा है। इंग्लैंड मेजबान टीम है और मैच के शुरू होने के पहले कहा जा रहा था कि उनका कागज पर पलड़ा भारी है। इसी बीच गेंदबाजी में एक और परिवर्तन हो रहा है। क्लिव ट्रायन का आगमन हो रहा है, जिन्होंने की अच्छी गेंदबाजी अपनी टीम की ओर से की है। एक ऑलराउंडर की भूमिका में आती हैं, बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी का दायित्व संभालती हैं। और इंग्लैंड की शुरुआत, आज साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता लॉरा वॉलवर्ड ने और उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। दोनों टीमों में एक एक बदलाव था। सुने लूज साउथ अफ्रीका की टीम में आई, नैट्सिव ब्रांट इंग्लैंड की टीम में आई। इस बार खराब डिलीवरी, शॉर्ट डिलीवरी थी, स्टेप आउट किया ऑन साइड पर, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर डिस्पैच कर दिया है। नैट्सिवर ब्रंट ने गेंद को 4 रनों के लिए।
3: ये लगा आभा का चौका।
2: यकायक परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं और जैसा दर्पण इशारा कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि दोनों बैटर्स की आंखें जम चुकी हैं और एक जो गेंदबाजी अटैक था उसमें पूरी गेंदबाजी में जो धार होनी चाहिए, अगली गेंद एक बार फिर से उसे फाइन लेग बाउंड्री की ओर 4 रनों के लिए डिस्पैच कर दिया गया है।
3: ये लगा आभा का चौका।
2: कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, परिस्थितियां किस तरीके से बदलती हैं इसका नमूना पेश करते हुए नैट्सिवर ब्रांट और हेदर नाइट, पर्टिकुलरली नैट्सिवर ब्रांट, लेग स्टंप की दिशा में शॉर्ट डिलीवरी, लगातार दो गेंदों पर बैक टू बैक बाउंड्रीज। पिछले ओवर में 10 रन बनाए गए और पलक झपकते ही इन दोनों बैटर्स ने 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली है। एक बार फिर से गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया है ड्राइव करने के अंदाज में, हालांकि वहां पर शबनम स्माइल मौजूद थी। गेंद को उन्होंने फील्ड किया, एक रन का इजाफा, पहली गेंद डॉट डिलीवरी, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर चौका, चौथी गेंद पर सिंगल, 45 गेंदों में 54 रन इन दोनों खिलाड़ियों द्वारा जोड़े गए हैं, जिनमें नैट्सिवर ब्रंट का योगदान है 31 रन का और हेदर नाइट का योगदान है 21 रनों का। 77 3 विकेट के नुकसान पर इस बार फुल लेंथ डिलीवरी थी। अंतिम क्षणों में अपने स्ट्रोक को चेक किया, धीमे से पुश किया और स्ट्रोक खेलते ही दौड़ पड़ी थी नैट्सिवर ब्रंट और हेदर नाइट और नैट्सिवर ब्रंट के बीच में एक जो अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रही है, एक जो साझेदारी जिस तरीके से पुष्पित पल्लवित हो रही है, वो साउथ अफ्रीका के लिए एक डेंजरस सिग्नल हो सकता है।

0: सकता है। मिडिल और लेग स्टंप पर ऑन साइड में मोड़ा, मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी डीप में बाउंड्री लाइन के आसपास तैनात है, बड़ी आसानी के साथ रन मिलेगा। 11 ओवर के बाद 79 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर लूं।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: Last two overs have produced 21 runs. Heather Knight and Natsiva Brunt have shifted gears. South Africa need to be careful or this game will slip out of their hands. Ayobonga Khaka comes back into the attack, delivers this one on a good length. However, it goes down the leg side and Natsiva Brunt has helped it along to the fine leg boundary for 4.
6: Ye laga Abha ka choka.
5: Yes, a poor ball, but Natsiva Brunt, after the ball had left the bowler's hand, she squared up in her stance and then played the scoop shot or the lap shot, as they call it these days. And the ball went to the right of the short fine leg fielder. Excellent placement. That is why she's so highly rated. Next delivery, what is Kaka's response going to be? She shortens her length, delivers it in line with the stumps. And there comes out the short arm pull from Natsiva Brunt. And before the ball is fielded in the deep mid-wicket region, once again, the batters hustle quickly between the wickets to take 2 runs. Once again, good hustle, good running between the wickets. This is what they are known for. Remember, folks, Siva Brunt was out with a calf injury. Yet, she's running as if her life is on stake. This is what good athletes do when the stakes are high, when it is the semi-final, when it is the big stage. Slower delivery this time around from Khaka, outside the off stump, on a foolish length. However, Siva Brunt was able to press towards it and then use her wrists to whip it towards long on and pick up a comfortable single. And just like that, Siva Brunt has moved to 41 in just 31 balls. That strike rate now, Shivendra, is giving a handsome reading.
0: 2023 ke baad se Natsiva Brunt ne ek aankda hamare screen par aaya tha jisme ye reflect ho raha tha, isi beech back foot par jaakar cut kar diya. Third man boundary ke baar ja chuki hai gain 4 runon ke liye. Heather Knight ke balle se nikla hai behtareen chauka.
6: Ye laga Abha ka chauka.
0: 90 रन 3 विकेट के नुकसान पर 11.4 ओवर की बल्लेबाजी के बाद। और जतिन सूद बता रहे हैं कि नैट्सिव ब्रांट और हेदर नाइट के बीच आयरलैंड के खिलाफ 64 रनों की साझेदारी हुई थी इसी विश्व कप में, जबकि आयरलैंड के खिलाफ टीम खेल रही थी। और आज तो खैर ऐसी साझेदारी की बहुत ज़्यादा शिद्दत से तलाश थी। 41 रन 31 गेंदों में नैट्सिव ब्रांट, 22 गेंदों में 26 रन हेदर नाइट, 11 चौके पारी में लगाए जा चुके हैं। पहली गेंद पर चौका, उसके बाद कपल एक सिंगल और उसके बाद फिर से चौका। परिवर्तन के तौर पर आयाबोंगा खाका की ये गेंद डॉट डिलीवरी में कन्वर्ट होती हुई बाउंड, उसको फॉलो थ्रू में ही फील्ड किया गया था उनके द्वारा। रन बनने की कोई संभावना नहीं थी। तो ये दोनों खिलाड़ी, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ प्रण कर रखा है, निश्चय कर रखा है कि आज हम इंग्लैंड के नैया को पार लगाएंगे।
5: एब्सोल्युटली, दैट इज व्हाट द टीम नीड्स, दैट इज व्हाट ऑल ऑफ इंग्लिश cricket fan base is expecting from them. This delivery on a full length on the pads has been flicked away towards deep square leg for a comfortable single. That single takes Heather Knight to 27. We come to the end of the 12th over. 91 for 3 is what the score is. And this over was once again an expensive one from South Africa's perspective. It produced 4 plus 2 plus 1, if my math is right, about 12 runs out of it. So 33 runs in the last 3 overs. The momentum has shifted. South Africa desperately need a wicket or else they will see England running away with this match. Let us tell you, folks, that the average first inning score in the 6 women's T20Is played at the Oval is 152. However, in the England-New Zealand match that was played here last week, we saw New Zealand score 164 and England chased it down with 16 balls to spare. So it's a good track for batting. Malaba delivers this one on the pads. It has been flicked away towards square leg. And before the fielders in the deep can converge and throw the ball back, once again, the two batters have haired back and forth and converted.

0: converted this into a couple once again. Fabulous, enthralling running between the wickets. Watch out for it. Malaba gets ready to deliver what will be the second ball of the 13th over. Delivers this one on the shorter side of good length, outside the off stump. Has been chopped towards extra cover, where Laura Wolfart does the fielding. No runs to be had of that ball. However, what South Africa need is a wicket.
1: 93 रन 3 विकेट के नुकसान पर. मलाबा की गेंद स्टेप आउट किया हाफ वॉली पर लेकर इनसाइड आउट के अंदाज में खेला है. हालांकि फील्डर डीप में तैनात थी लेकिन गेंद को रोक नहीं पाई है. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: हेदर नाइट एंड नैट सिवर ब्रांड, दे आर ऑन फायर. उन्होंने प्रण कर रखा है कि आज कुछ खास करके दिखाना है. और साथ ही एक और खास बात देखने को मिल रही है कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी में जो डेप्थ है उसका आज नमूना पेश किया जा रहा है मिडल ऑर्डर में इन दोनों बैटर्स के द्वारा.
0: द लास्ट बाउंड्री दैट वॉज हिट बाय हेदर नाइट बिफोर द बॉल हिट द बाउंड्री कुशंस और सो वी फेल्ट. नदीन डी क्लर्क रैन अक्रॉस फ्रॉम लॉन्ग ऑफ, पुट इन अ बिग डाइव टुवर्ड्स हर राइट एंड ट्राइड टू फ्लिक इट अवे फ्रॉम द बाउंड्री कुशंस. वी फेल्ट दैट द बॉल हैड ऑलरेडी हिट द बाउंड्री कुशंस एंड नाउ कम्स द कंफर्मेशन फ्रॉम अंपायर एलोइस शेरिडन. ऑलबियट इट कम्स आफ्टर अ डिले बिकॉज अ बाउंड्री चेक वॉज हैपनिंग. इट हैज बीन सिग्नल्ड फॉर 97 for 3 आफ्टर 12.3 ओवर्स. नेक्स्ट डिलीवरी मलाबा दिस टाइम डिलीवर्स इट विद अ स्लाइटली फ्लैटर ट्रैजेक्टरी so that the batter cannot step out on a good length around the off stump. And once again, brilliant use of wrist from Heather Knight, who tucks it away into the gap between long on and deep mid wicket. And once again, these two running like two cheetahs between the wicket convert it into a couple. 99 for 3 after 12.4 overs. The running between the wickets has been exhilarating.
1: 28 गेंदों में 35 रन पर पहुंच गई है हेदर नाइट. और बड़ा संयोग वाली बात यह है कि काफी देर से नैट सिवर ब्रंट को बहुत ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिल रही है. उन्होंने 31 गेंदें खेली हैं, 41 रन पर पहुंची हैं और 29 गेंदों में 35 पर पहुंच गई हैं हेदर नाइट. और चौथे विकेट के लिए 58 गेंदों में 76 रन इन दोनों बैटर्स द्वारा जोड़े जा चुके हैं. क्या बेहतरीन साझेदारी हुई है. 99 रन इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, स्टेप आउट किया, ऑन साइड में खेला और मिड विकेट की दिशा में जब तक गेंद को फील्ड किया जाए आसानी के साथ एक रन. इसके साथ ही 13 ओवर के बाद 100 रन पूरे होते हुए इंग्लैंड के 13 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 100 रन 3 विकेट के नुकसान पर.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
3: तुम हो ही भुलक्कड़.
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
5: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
0: Last four overs have produced 42 runs. South Africa need a breakthrough. They go to Nadeem D. Clerk, who is obviously an experienced campaigner. Hasn't done a lot of things with the ball in this tournament. However, here she induces an LBW appeal. However, the impact to my untrained eye seemed to be outside the off stump. Nat Siva Brunt, beg your pardon, it was Heather Knight, the batter in question, and the umpire has turned Nadine D. Clerk's appeal down. She ran in from over the wicket, delivered this one on a full length. The replay on my monitor suggests that she released it with a cross seam grip, and Heather Knight had planted her foot outside the off stump before trying the cross batted swish. She missed the ball, the ball hit her pad, and the umpire showed no interest. Let us remind you, South Africa ran out of reviews very early because they burnt two reviews wastefully. Anyhow, the next delivery outside the off stump on a full length has been driven towards deep cover for a comfortable single, which takes Heather Knight to 37 and brings Nat Siva Brunt back on strike. This losing of reviews, we told you that it is going to be an interesting subplot in this story. Next delivery, a low full toss, flicked away for 4.
2: ये लगा आभा का चौका.
0: De Klerk was probably searching for a Yorker, ended up drifting on the pads, failed to land this one, and Natsiva Brunt, who is now watching the ball like a football, was quickly onto it and flicked it away towards the deep backward square leg boundary to pick up four. Next delivery, again a very full length delivery. This time, Nadine De Klerk pretty much lands it where she wanted it to, outside the off stump, and Natsiva Brunt squeezes it towards the backward

0: point fielder Anari Dirksen will ensure that the ball doesn't pass her. A dot ball for our scorer Sunil Dighe to mark.
1: Dirksen ने इस गेंद को रोका जरूर, लेकिन ऐसा लगा कि हाथ झटकती हुई नजर आई. शायद इस बार स्कूप करने की कोशिश, और कोशिश कामयाब होती हुई. विकेट कीपर के सिर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: नैट सिवरब्रंट की जितनी तारीफ की जाए कम है. बड़े संकट की घड़ी में वो आई थी जब इंग्लैंड की हालत खराब थी और 3 विकेट गिर चुके थे. इनफैक्ट 6 ओवर के बाद 35 रन बने थे 3 विकेट के नुकसान पर. अब पिछली 3 गेंदों में उन्होंने 2 चौके लगा दिए हैं और 49 पर पहुंच गई हैं. और इसके साथ ही अगली गेंद को इन्होंने मिड विकेट की दिशा में खेला है. 2 फील्डर्स को बाइसेक्ट करते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए.
2: ये लगा आभा का चौका.
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस 1 कॉल दूर है.
0: Nat Sivabrant with that boundary has completed a half century. 53 in 35 balls, out of which 9 boundaries were scored, all in enthralling fashion, all in riveting fashion. It's been a captain's knock, as Shivendra was just talking. She came out to bat when England were in a deep, deep spot of bother. However, she exhibited maturity, responsibility at the start, provided sturdiness to the innings, but once she got her eye in, she started exhibiting what she's known for, those innovative shots behind the square, that quick, lightning quick running between the wickets, and it has been a joy to watch and call this innings live. England 113 for 3 at the end of the 14th over. Drinks are currently on the field, and I believe, Shivendra, South Africa will be scratching their heads because they need to find a way to get this partnership broken.
1: ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका की जो गेंदबाजी है पूरी तरीके से डेरेल हो चुकी है. और अगर थोड़ा सा अगर वैगन व्हील हमारे पास सामने आएगा तो उससे लगता है, ऐसा दर्पण पता चलेगा कि मिडिल और लेग स्टंप की दिशा में ही गेंदों को, गेंदबाजी को केंद्रित किया गया है. और नैट सिवरब्रंट ने खासतौर पर उसका बेहतरीन भरपूर मजा लिया है. उन्होंने स्कूप शॉट्स खेले हैं, उन्होंने मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक्स खेले हैं. जब जब शॉर्ट डिलीवरीज आई हैं तब उन्होंने पुल करने के अंदाज में स्ट्रोक्स खेले हैं. 19वां अर्धशतक है. T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी करना बहुत पसंद करती हैं. 4था अर्धशतक है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और T20 वर्ल्ड कप में उनका 8वां अर्धशतक है. ये आंकड़े जतिन सूद ने हम तक पहुंचाए हैं हमारे स्टैटिस्टिशियन के द्वारा, और ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि नैट सिवरब्रंट, आज सोफिया डंकले की जगह पर उनको टीम में शामिल किया गया था. हालांकि सोफिया डंकली का जो प्रदर्शन था पिछले मुकाबले में वो कहीं से भी खराब नहीं था, लेकिन सच्चाई ये है कि आज जब टीम में वापसी हुई है नैट सिवरब्रंट की, तो उन्होंने साबित कर दिया है कि क्यों उनको लंबी रेस का घोड़ा कहा जाता है. और उन्होंने बड़ी सेवा की है. उनके साथ साथ हैदर नाइट, जो कि इस समय क्रीज पर मौजूद हैं, 4थे विकेट के लिए इन दोनों खिलाड़ियों ने एक अविस्मरणीय साझेदारी निभाई है. और साउथ अफ्रीका का जो गेंदबाजी आक्रमण, जिसमें मैरिजन कैप आई, शबनम स्माइल आई, इनफैक्ट अयाबोंगा खाका भी उस टिकड़ी की बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं. मलाबा इसी बीच नया ओवर लेकर के आई हैं, और लगातार मिडिल और लेग स्टंप की दिशा में ही गेंदबाजी की जा रही है. ये अलग बात है कि इस बार स्ट्रोक अच्छे से खेल नहीं पाई हैदर नाइट, लेकिन 113 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका है. 15वां ओवर प्रगति पर है.
0: दैट डिलीवरी stayed low from where I saw it, Shivendra. It was drifting on the pads and Heather Knight went for a cross-batted swipe, but it stayed low and struck her pad. Next delivery, this one generates a bit of extra bounce. This time Heather Knight was looking to go for the reverse swish or the reverse sweep, but the ball passed over the bat. The previous one went under the bat. This one goes over the bat, hits her body. There's an appeal for LBW, but shakes her head, does umpire Aloysius Sheridan. Next delivery, steps out Heather Knight, takes this one, converts this one into a full ball, and then whips it towards long on to pick up a comfortable single. So that tells me, Shivendra, that there is some uneven bounce on this wicket.
1: Hai zarur, lekin jis tarike se us

0: The replay on my monitor tells me that I jumped the gun. Nadine de Klerk did dive forward, but she ended up collecting the ball on a half volley. She did not exactly reach the ball, so it's a valiant effort and not a drop catch. Anyhow, the last ball of the over, Nat Sivabrant now on strike. Good length delivery, angling in towards the off stump. Sivabrant backs away and chops it towards cover. End of the 16th, 123 for 3.
1: 23 रन पर तीन इंग्लैंड का स्कोर था और अब 100 रनों की साझेदारी हो चुकी है नैट सिवरब्रंट और उनके साथी हैदर नाइट के बीच में. और जतिन सूद बता रहे हैं कि चौथे विकेट के लिए इस विश्व कप में ये सबसे बड़ी साझेदारी है. 101 रन न्यूजीलैंड बनाम स्कॉटलैंड के बीच में 101 रन बनाए गए थे इनफैक्ट शार्प और हैलिडे के बीच में, और अभी फिलहाल 100 रन बने हैं. तो जाहिर सी बात है जिस अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है ये जो आंकड़ा है ये भी पीछे छूटने वाला है. 16 ओवर के बाद 123 रन है, 3 विकेट के नुकसान पर 7.69 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाए जा रहे हैं. मिडिल और लेग स्टंप की दिशा में एक बार फिर से आया बोंगा खाका आई हैं. नए ओवर की उन्होंने शुरुआत की है, लगभग 89-90 किलोमीटर की स्पीड से गेंदबाजी करती हैं और कोई मुश्किल नहीं इसे नेगोशिएट करने में. ऑन साइड में खेला, हालांकि गेंद बाउंस करती हुई हवा में थी लेकिन फील्डर के पास नहीं, नो मैंस लैंड में गिरती हुई. बड़ी आसानी के साथ रन दिए गए और नैट सिवरब्रंट ने जिस अंदाज में चौके लगाए हैं, खासतौर पर उन्होंने ऑन साइड में मिडिल और लेग स्टंप पर जब उनको गेंद फेंकी गई है, पुल शॉट बहुत ही बेहतरीन खेलती है लेकिन इस बार डीप में बहुत अच्छी फील्डिंग. 2 रन तो खैर मिल ही जाएंगे और जहां सिंगल आ रहे थे 1 रन को 2 रन में बदला है, 2 को 3 में बदला है, खराब गेंदों को चौकों में बदला है. और इंटरेस्टिंग बात एक और है, दर्पण की पूरी पारी में एक भी ओवर बाउंड्री या एक भी छक्का नहीं आया है. ये भी जाहिर करता है कि बल्ले को बड़ी सावधानी से गेंद के साथ कनेक्ट किया गया है. और ओवर बाउंड्रीज कई बार ऐसा भी होता है कि मिस्क्यूट शॉट की बदौलत भी आ जाती है, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला. पारी का 17वां ओवर चल रहा है और रन बनाने की रफ्तार 7.70 रन प्रति ओवर. ओवल के मैदान पर यह मुकाबला इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच खेला जा रहा है. दूसरा सेमीफाइनल है महिला टी20 विश्व कप का, जहां दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. आया बोंगा खाका की गेंद लो फुल टॉस पर और ऐसा लगता है कि हैदर नाइट ने हमारी बात सुन ली थी. लो फुल टॉस पर उन्होंने गेंद को बाउंड्री के बाहर डिस्पैच कर दिया है 6 रनों के लिए. पहला छक्का,
2: ये लगा आभा का छक्का.
1: जी हां, पारी में लगने वाला पहला छक्का 42 गेंदों में 52 रन पर पहुंच गई है हैदर नाइट. 123 से ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट.
0: हर 10th T20I 50. She also has 100 to her name and the first against South Africa in this long illustrious career of hers. And now unfurls a delectable inside-out drive which fetches her another 4.
2: Ye laga Abha ka choka.
0: This was a slower delivery, perhaps the attempted leg cutter from Ayobonga Khaka outside the off stump, however on a drivable length. Nat and Heather Knight pressed backwards so that she could get underneath the ball and then whilst flaunting that high elbow of hers unfurled that delectable inside out drive towards the extra cover region. She moves to 56, England 137 for 3, looking at a score perhaps in the excess of 175 from here on in. Another slower delivery, this time it has been driven along the carpet in the same direction in the deep extra cover region. It will be fielded by Nadine de Klerk, who runs towards her left to cut it off. 138 for 3 at the end of 17.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
3: तुम हो ही भुलक्कड़.
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर लूं.
5: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
1: इंग्लैंड की टीम एक समय संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी इस सेमीफाइनल में. 23 रन थे 3 विकेट के नुकसान पर और जो शुरुआती 3 बैटर्स थी डैनी वियार्ड फॉज, एमी जोन्स और एलिस कैप्सी आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुकी थी, लेकिन उसके बाद नैट सिवरब्रंट और हैदर नाइट का आगमन हुआ क्रीज पर. 138 रन 3 विकेट के नुकसान पर फिलहाल स्कोर है. एनिंदी क्लार्क नए ओवर को लेकर के आई हैं, स्लोअर डिलीवरी थी शॉट ऑफ लेंथ गेन, उसका ड्राइव किया लॉन्ग।

0: ऑफ की दिशा में एक रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया। पारी का ये कुल मिलाकर के 18वां ओवर है और नदीम डी क्लार्क अपना तीसरा ओवर लेकर के आई हैं। तो शबनम इस्माइल ने अपना गेंदबाजी का कोटा पूरा कर लिया है, मैरिजन कैप ने गेंदबाजी का कोटा पूरा कर लिया है, अयाबोंगा खाका, दरअसल ये जो टिकरी है जिसने इस मैच से पहले 25 विकेट हासिल किए थे, आज अयाबोंगा खाका बहुत ही निष्प्रभावी रही। इसी बीच अगली गेंद को मिड विकेट की दिशा में डिस्पैच कर दिया है सिवर ब्रंट ने 4 रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: तो चौकों की बरसात हो रही है ओवल के मैदान पर, खराब ओवरऑल गेंदबाजी का नमूना पेश किया जा रहा है, ओवर पिच डिलीवरी, एक कदम आगे बढ़ाकर हाफ वॉली पर लेकर मिड विकेट की दिशा में गेंद को डिस्पैच किया गया 4 रनों के लिए 143, 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से स्टेप आउट करके हाफ वॉली पर लेकर गेंद को ओवर बाउंड्री के रूप में कन्वर्ट किया है, 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है।
1: ये लगा आभा का छक्का।
0: दोनों बैटर्स के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है, 18 चौके और 2 छक्के लगाए जा चुके हैं। नेट सिवर ब्रंट और हेदर नाइट, तू डाल डाल मैं पात पात वाली कहानी दोहराते हुए, और दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन है कि कौन स्कोरिंग के मामले में दर्पण एक दूसरे से आगे निकलेगा।
2: दैट सिक्स वॉज ह्यूज, 85 मीटर्स far the ball went. Oh, Natsiva Brunt has not only shifted into the top gear, might as well add that she has now turned on the nitro boosters. 149 for 3 England in 17.3 overs. Looks like she smacked the ball so hard that it has gone out of shape. The two umpires have converged and they are having a close look at the ball. Natsiva Brunt, this is why they were so desperate to play her. Remember, she missed the ODIs against New Zealand played earlier. She missed the T20Is played against New Zealand earlier. And then she featured in the practice matches, featured in the first couple of games they played in this tournament. However, after that, she had to sit out due to an injury. Yet, in this big match, on the big stage, they brought her in because they know the value that she brings to this 11. The fans who have been following WPL also know how important a cog in the wheel she has been for the Mumbai Indians, who she represents in the WPL. She is an excellent, excellent player, one of the most consistent performers over the years. Meanwhile, reserve umpire Candice Labode is out there in the middle with a box of spare balls. We are going to have a change in ball, and South Africa will hope, their fans will hope, that the change in ball brings about a change in fortunes for them, because currently it's all going England's way. We still have 15 legal balls to go, and in those 15 legal balls, they want to limit the damage as much as possible.
0: पिछले 5 ओवर में 56 रन बनाए गए हैं इंग्लैंड के बैटर्स के द्वारा, रन बनाने की रफ्तार रही है 11.20 रन प्रति ओवर। नदीम डी क्लार्क की गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, ऑन साइड में खेला है उसे और गेंद 4 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जा चुकी है।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: 153 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस चौके के साथ ही 150 रन पूरे होते हुए इंग्लैंड के, तो कहां तो टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी और कहां ऐसा लग रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी की जो धार है वो तार तार हो चुकी है, पूरी तरीके से कुंद हो चुकी है। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में लंबा फासला था, इस बार यॉर्क करने की कोशिश, अच्छी वापसी नदीम डी क्लार्क की, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेला है, 1 रन मिलेगा 154 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में 2 चौके, 1 छक्का और 2 कपल, यानी कुल मिलाकर के 16 रन बनाए जा चुके हैं दोनों बैटर्स के द्वारा। रन बनाने की रफ्तार लगभग 9 रन के आसपास पहुंचती हुई, 8.64 रन प्रति ओवर टू बी प्रसाइज, 17.5 ओवर के बाद 154 3 विकेट के नुकसान पर। नैट सिवर ब्रंट 45 गेंदों में 73 रन पर पहुंच चुकी हैं। हेदर नाइट के बल्ले से निकलता हुआ यह स्ट्रोक डिफेंसिव स्ट्रोक था, रन बनने की संभावना नहीं, 46 गेंदों में 58 रन उनके नाम पर, 18 ओवर के बाद इंग्लैंड 154 3 विकेट के नुकसान पर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: 12 balls to go, 156 for 3 England, beg your pardon, 154 for 3, how many more can they get? This partnership

0: over. The keeper is up to the stumps. Danny Gibson, who's known for those big hits, is currently on strike. Delivers this one on a very full length, does Ayobongo Kaka, ensuring that the batter cannot get underneath it and hence cannot get the elevation. She does swing the bat hard and the ball goes skipping away towards deep mid-wicket, where Nadine de Klerk does the fielding and she ensures that there is no more than a single to be had. 161 for 5, 5 balls to go in the innings.
1: Ayobongo Kaka अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर के आई हैं. 36 रन उन्होंने खर्चे हैं. पहली सफलता की तलाश है. मलाबा का पिछला ओवर साउथ अफ्रीका के लिहाज से बड़ा सुनहरा ओवर कहा जा सकता है, जहां उन्होंने दो विकेट हासिल किए थे. फिलहाल फ्रेया कैंप और डैनी गिब्सन क्रीज पर हैं. कैंप ने अभी सिर्फ एक गेंद खेली है. रन बनाने का सिलसिला उनको शुरू करना है. और जैसा हमने जिक्र किया, दर्पण बता रहे थे कि जो स्लो ओवर पेनल्टी है उसके लिहाज से केवल 3 खिलाड़ी 25 गज का जो घेरा है, सर्कल है, उसके बाहर तैनात किए जा सकते हैं. अन्यथा आमतौर पर सामान्य स्थिति में आप 4 खिलाड़ियों को सर्कल के बाहर तैनात कर सकते थे. 161 रन 5 विकेट के नुकसान पर. रन बनाने की रफ्तार 8.40 रन प्रति ओवर. अच्छी वापसी करते हुए Ayobongo Kaka ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद को केंद्रित रखा है. हल्का सा मूवमेंट भी स्लैश करना चाहती थी उसको, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं. और ऐसे समय पर कोई डॉट डिलीवरी जिसका मोल जो है वो सोने के भाव से तो कम हो नहीं सकता, और वो डॉट डिलीवरी डाली गई है Ayobongo Kaka के द्वारा 161 5 विकेट के नुकसान पर 19.2 ओवर की बल्लेबाजी के बाद. और जब इनिंग्स ब्रेक होगा, स्टूडियो से आप हमारा कार्यक्रम सुनेंगे फ्री हिट 2020, जहां पर विशेषज्ञ मौजूद होंगे और आप उनसे उनका विवेचन सुन सकते हैं किस तरीके से इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की पारी आगे बढ़ी है गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में. कैंप इस समय शून्य पर क्रीज पर हैं, स्ट्राइक पर हैं. सामने हैं गिब्सन, 3 गेंदों में 4 रन बनाकर ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई वाइड की अपील करते हुए जैकलिन विलियम्स ने अपने दोनों हाथ हवा में समानांतर उठा दिए हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि Ayobongo Kaka की ये गेंद उसे वाइड करार दिया गया है. और पिछली गेंद भी ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, इस बार उससे भी ज्यादा बाहर. एक जो बाउंड्री लाइन है जहां पर वाइड का निर्धारण होता है, ब्लू लाइन, उसके बाहर टिप्पा गेंद खाती हुई. तो अभी भी अतिरिक्त रनों की संख्या हो चुकी है 10. इंग्लैंड 162 5 विकेट के नुकसान पर. ऑफ स्टंप की दिशा में गेंद ऑन साइड में खेला है, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद पहुंची है. 1 रन से संतुष्ट होंगे दोनों बैटर्स. साउथ अफ्रीका के लिहाज से दर्पण अच्छी वापसी कही जा सकती है.
0: यू कैन सी व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू. Kaka इज ट्राइंग टू टेक द बॉल अवे फ्रॉम फ्रेया कैंप्स आर्क. फ्रेया कैंप इज नोन फॉर that bat swing of hers. She's known to unfurl those golf swings. She might not appear as the most powerful person, but this youngster can strike the ball big due to her bat swing. However, she was able to shuffle across and work that one towards the leg side on the previous occasion. Next delivery, Gibson this time shuffles to the leg side. However, very intelligently, Kaka delivers this one outside the off stump of the right hander, and therefore in the end, even with a stretch, Gibson can not reach the ball. Yet another dot ball. Intelligent bowling from Kaka. Next delivery. This time she delivers it in line with the leg stump. Gibson swings the bat hard, gets a top edge. The ball comes swirling down towards Chloe Tryon, who was running towards her left from short third, and looks like she hasn't quite been able to catch it. Also, in her peripheral vision was Malaba, who ran in from fine leg, and both of them converged. However, it looks like the ball has hit the hands of Chloe Tryon and then spilled. And Tryon also tells Malaba, it was my catch, you did not need to be as close. 2 runs meanwhile were taken. Next delivery, which was the final delivery of the innings. It is outside the off stump and looks like Danny Gibson has got an edge. No, she hasn't. Jacqueline Williams says that it is a bye. The ball trickles away to fetch England 4 more.
2: ये लगा आभा का चौका.
0: इट वॉज अ गुड लेंथ डिलीवरी इन लाइन विद वॉट वुड हैव बीन द ट्रैम लाइन फॉर द एम्पायर टू डिसाइड. इट वॉज अ वाइड बॉल, हाउएवर द बैटर शफल्ड टुवर्ड्स इट एंड हेंस इट हैजंट बीन सिग्नल्ड वाइड. इवेंचुअली गिब्सन वॉज लुकिंग टू गाइड इट टुवर्ड्स थर्ड यूजिंग एन ओपन फेस, बट शी कुड नॉट ले बैट ऑन बॉल. द बॉल वेंट पास्ट हर, पास्ट द विकेट कीपर एज वेल एंड ट्रिकल्ड ओवर इन टू द फेंस. दैट मीन्स इंग्लैंड हैव एंडेड देयर इनिंग्स, एंडेड देयर कोटा ऑफ 20 ओवर्स विद 169 फॉर 5. दे लॉस्ट 3 विकेट्स वेरी अर्ली. हाउएवर देन नट्सिवा ब्रंट एंड हेदर नाइट विद एन एक्सलेंट excellent partnership, were able to forge a recovery. We will meet you after the innings break.

0: Now we will head to the studios of Akashwani for a very special program called Free Hit 20.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: Having lost 3 wickets for 23 runs, England staged a comeback with a stand of 133 of 90 for the fourth wicket between current and former captains Natsivo Brunt and Heather Knight, but subsequently South Africa striking back as England score 169 for 5. Hello and welcome to Free Hit 20. I am Megha and join me in studio as my co-host is Dharmendra.
6: Ji, aur hamare saath mehmaan hai hamare Khyati Gulani, purv cricketer, Jishanul Yaqeen, purv cricketer aur G Rajaraman, varishth khel patrakar. राजा, ये जो 169 रन बनाया है इंग्लैंड ने, क्या आपको लगता है कि थोड़ा कम रह गई इंग्लैंड की टीम? क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी उनकी चल रही थी उन पावर प्ले के ओवर्स के बाद, ऐसा लग रहा था कि 180-185 तक स्कोर जा सकता है।
7: 180 तो बनता था, लेकिन दोनों विकेट जो सेट बल्लेबाज थे, दोनों एक साथ आउट होना, एक ही ओवर में आउट होना, शायद वो थोड़ा सा भारी पड़ा है। लेकिन इंग्लैंड के पास रन काफ़ी है। मुझे लग रहा था शुरुआत में, मुझे लग रहा था कि 150 का स्कोर डिफेंडेबल स्कोर होगा। 169 काफ़ी है उनके पास, और इंग्लैंड के पास वो गेंदबाज है जो साउथ अफ्रीका को रोक सके।
5: क्या थी इंटरेस्टिंगली दैट स्टैंड ऑफ 130 बिटवीन करंट एंड फॉर्मर कैप्टन्स, बट ऑन आइदर साइड ऑफ इट नॉट मच कॉन्ट्रीब्यूशंस।
8: Yeah, definitely. The way they have started and like losing 3 wickets in just 23 runs is like something odd for this big game. But after that, the way this Catherine Brunt and Heather Knight have played and the way they have stood up, it's amazing. It's commendable.
6: और जिशान, क्या यहाँ पर रणनीतिक चूक हुई है थोड़ी सी साउथ अफ्रीका के कप्तान से? क्योंकि अगर पावर प्ले की बात करें तो उनके जो फ्रंटलाइन गेंदबाज थे, दोनों के 3-3 ओवर समाप्त हो चुके थे और कैप का 4th ओवर 7th ओवर तक समाप्त हो चुका था। इसके बाद ही इंग्लैंड ने अपनी जो पारी है वो बिल्ड किए है, क्योंकि 3 विकेट तो उन्होंने पावर प्ले में ही गंवा दिए थे।
9: बिल्कुल, थोड़ी सी कमी तो रही है साउथ अफ्रीका की, खासकर जो फील्डिंग को भी मैं देख रहा था कि उनका जो फील्डिंग का सेट करने का जो भी जगह होती है वो नहीं किया उन्होंने। आई डोंट नो कैसे क्या स्ट्रैटेजी उनकी रही आपस में, उन लोगों के कैप्टन की क्या सोच थी, क्योंकि जहां तक मैं समझ रहा हूं कि उन्होंने ज़्यादातर रन जो बनाए हैं दोनों जो बैटर हैं, उन दोनों ने जो ज़्यादातर रन बनाए हैं वो मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच के एरिया में और स्वीप करके इसी लेग साइड में ज़्यादा रन बनाए हैं उन्होंने। तो उनको कहीं ना कहीं वो एक सोच होनी चाहिए थी कि या तो ये है कि 3 विकेट उन्होंने ले लिए थे पावर प्ले में, तो उस वजह से थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हुआ उन्हें, या उस तरह की कोई चीज़ हुई जहां वो मेंटल लैक किया उन्होंने वहां पे अपने उन चीज़ों को स्ट्रैटेजी में। उनको वो ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए था कि चाहे दोनों बैटर जो थे उनके जो बैट आ रहे थे, अगर आप वॉच करेंगे उनकी बैटिंग को, तो जो भी बैट उनके आ रहे थे वो मिड विकेट के एरिया की तरफ ज़्यादा उनकी कोशिश थी मारने की। और उनका जो बिल्ट है दोनों का ही, एक लंबी है, उनके जो रेंज उनको मिल रहे थे वो भी बहुत आराम से उनको मिल जा रहे थे रेंज, तो वो हमेशा कोशिश कर रहे थे मिड विकेट की तरफ मार के रन बनाने के लिए। तो वो स्ट्रैटेजी उन्होंने नहीं समझा बैटर को, जब तो बाय द टाइम वो समझते उन्होंने, या तो इनको ये करना चाहिए था कि बीच में ही स्पिनर को कोशिश करनी चाहिए थी एक बार और एक ओवर और डाल करके, एक ओवर और उनको रोकना चाहिए था, दो ओवर कराना चाहिए था, दो ओवर बीच बीच में ऐसे करके कुछ स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी, तो मुझे लगता है कि वो इंग्लैंड टीम को 140-150 के आसपास रोक सकते थे जहाँ तक बॉलिंग साइड की बात है। लेकिन जहाँ तक बैटिंग साइड की बात है, ऑब्वियस है, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उन दोनों ने बैटिंग की है, साउथ अफ्रीका को उन्होंने उनकी जो बॉलिंग अटैक था उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था उन लोगों ने। अब यहाँ पर यह था कि एक कोई बैटर को रहना चाहिए था देखा था जब उन्होंने कि वो आउट हो गए हैं तो दूसरे एक को रहने की कोशिश करनी चाहिए थी आखिरी बॉल तक। अगर वो रहते तो हो सकता है कि वो जो 10-15 रन का जो लैक किया है वो भी आता और 180

0: side of stump and playing the sweep or playing the reverse sweep. And you can't be setting fields for unorthodox shots, so it's tough. And I think what England did was played very smart. After they lost the three wickets, they stayed at the wicket and they played out the one big bowler that South Africa had. In fact, two of them, they played them out very carefully and went after the others. And I think South Africa bowlers did not have a plan, or maybe they had a plan and they were not able to execute it. The other bowlers, the new ball bowlers, did a fantastic job for South Africa, but they needed somebody to back that up. And England was just biding its time and knew that it can go after the other bowlers, and they did a fabulous job of that.
1: जी और ख्याति अगर बात करें इंग्लैंड की इस पारी की कप्तान नैट सीवरब्रंट की वापसी जिस तरह से वो पिछले कुछ मैचों से बाहर थी और उसके बाद ये पारी क्या आपको लगता है कि मैच का सबसे निर्णायक पहलू साबित हो सकता है
2: डेफिनेटली काफ इंजरी के बाद वो वापस आई हैं और उन्होंने जिस तरीके की ये पारी खेली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज लीग स्टेज में भी खेलना इस टाइप की इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बट नॉकआउट्स में जहाँ हर गेम इंपॉर्टेंट होती है अगर वहाँ पर अगर आप अपनी नर्व्स को कंट्रोल करके अपनी जो भी इंजरी है पास्ट की उसको भूल के इस तरीके से अगर कॉन्ट्रीब्यूट करें और जहाँ पर आपके जो टॉप थ्री बैटर्स लीग स्टेज में अच्छी प्रदर्शन देते हुए और यहाँ आके अगर जब वो फेल हो जाएं और आपकी ये पारी कितनी इंपॉर्टेंट होती है वो आज दिख गया
3: They were exhibiting what value experience holds in such games where nerves are involved at a very high intensity. Now turning our attention to the second innings and we've talked about experience. Zeeshan Wolfart बहुत time से runs नहीं आए उनके बल्ले से considering कि विश्व कप से पहले कितने शानदार धुआंधार फॉर्म में थी
4: बिल्कुल देखिए क्रिकेट है मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मैच है आज के दिन में तो मुझे उम्मीद है कि वो वापस रन बनाने का उनका आज का दिन हो सकता है कि आज का दिन उनका हो जाए बहुत बार ही ऐसा देखने को मिला है कि कोई एक बैट्समैन या एक कोई बैटर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है लेकिन एक सर्टेन जगह पे जहाँ पे ज़रूरत टीम को होती है वहाँ पे वो परफॉर्म करके अपनी टीम को निकाल के लिए तो आज उनका हो सकता है कि वो आज दिन वापस आए और साउथ अफ्रीका के लिए एक अच्छी पारी खेल करके साउथ अफ्रीका को लेकर के जाएं लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि टीम उनकी अच्छी है बैटर्स उनके पास भी अच्छे हैं साउथ अफ्रीका के पास में और जहाँ तक मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि इंडियन बॉलर्स भी हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर्स थे उसके बावजूद उनके जो बैटर्स थे उन्होंने 170 प्लस रन किए थे इंडिया के अगेंस्ट में तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्हें दिक्कत होगी करीब तक जाने में इस मैच में इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये एक मैच ज़रूर से एक बेहतरीन मोड़ की तरफ हाँ ये ज़रूर है कि शुरुआत के जो छः ओवर हैं वो बहुत डिपेंड करेंगे साउथ अफ्रीका के जीत और हार के ऊपर में
1: राजा 170 रन का लक्ष्य पिच में आपको ऐसा कुछ अभी दिखा है जिससे परेशानी हो सकती है साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को
0: बाउंस कुछ खास नहीं है और मुझे लगता है कि फिरकी गेंदबाज उसका पूरा फायदा उठाएंगे देखने को मिलेगा सुनने को मिलेगा हमारे कमेंटेटर्स हमें सुनाएंगे कि पिच में जो बाउंस एक आध बॉल जो बाउंस हुआ था उसमें विकेट जरूर मिला था दक्षिण अफ्रीका को लेकिन यू विल सी दैट इंग्लैंड के स्पिनर्स जो है वो हावी होंगे दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों पे
3: खास करके एक्लिप्सन हमने देखा है कि विश्व कप में अपना ए गेम लेकर आती हैं शानदार प्रदर्शन इस विश्व कप में भी अब तक उनका रहा है
2: जी बिल्कुल ये अब कॉन्टेस्ट अब सेकेंड इनिंग में इट विल बी बिटवीन द बैटर्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड द स्पिनर्स ऑफ इंग्लिश टीम डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट एंड लॉरा वुलवर्ट एंड ब्रिट्स एंड मैरिसन काप और एलिस कैप्सी एक्लिस्टन और सारा ग्लेन के बीच में कॉन्टेस्ट होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कौन इस कॉन्टेस्ट को जीतता है
1: तो जीशान क्या रहेगा पहला लक्ष्य इस समय साउथ अफ्रीकन टीम की जब बल्लेबाजी आएगी वो क्या चाहेंगे पार प्ले में कम विकेट गंवाएं कम रन भले बने कोई बात नहीं
4: देखें आजकल के ज़माने के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ये है ज़रूर कि वो कोशिश करेंगे कि पावर प्ले में छः ओवर में हम 50-55 रन बना लें और कुछ विकेट भी ना गिरे वो कोशिश रहती है उन लोगों की स्ट्रैटेजी ऐसी हो सकती है लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ये विकेट ऐसा है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं है इस विकेट में स्लो विकेट है इस स्लो विकेट के हिसाब से अगर वो मेहनत करेंगे कोशिश करेंगे, अपने आप को मेहनत करेंगे, अगर रन दौड़ के बनाने की

0: वो जो कोशिश होती है एक सिंगल और डबल और उस तो वो अगर वो कंसंट्रेट करेंगे उसके ऊपर में, तो मुझे लगता है कि वो इस जो टारगेट है इसको अचीव करने के लिए वो काबिल होएंगे। लेकिन अगर वो जाएंगे बिग हिट करने के लिए, तो आपने फर्स्ट इनिंग में भी देखा है कि जो टॉप स्कोरर हैं इस वर्ल्ड कप की, जिन्होंने 100 भी किया है,
1: पहुंचे।
0: उन्होंने रन नहीं कर पाए हैं वो। तो बेहतर होगा हमारे ख्याल से कि जो शुरू का 6 ओवर है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार ये कह रहा हूँ कि शुरू का 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस मैच में खासकर। जैसे जैसे ये मैच एंड की तरफ जाएगा, साउथ अफ्रीका के जो बैटर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डेवलप होता चला जाएगा, तो बेहतर होगा कि वो विकेट कम गिराएं, आखिर तक जाने की कोशिश करें। अगर आखिर तक जाने की कोशिश करेंगे तो मुझे यकीन है कि एक बहुत बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा।
1: साउथ अफ्रीका चेज डाउन 158 अगेंस्ट इंडिया एंड कलेक्टेड टू क्रूशियल पॉइंट्स इन द ग्रुप स्टेज। नाउ डेटसन, वी हैव सीन हर बैट एट नंबर 3 इन दिस वर्ल्ड कप, बैरिंग दैट गेम अगेंस्ट इंडिया वेयर शी कुडंट ओपन हर अकाउंट, शी इज बीन चिपिंग इन विद इंपॉर्टेंट रन्स।
2: दिस इज अ गेम वेयर एवरीबॉडी हैज टू कॉन्ट्रीब्यूट, इज नॉट अ स्मॉल स्कोर, चेजिंग 170 टू विन, everyone has to contribute, and if the top orders, the top three can get those runs, well and good for South Africa. It's going to be a challenge, Megha. I think no matter what your form is, the pressure of the scoreboard, that is going to be weighing very heavily on the batters' minds. Normally you would want to get about 45 runs in the first 6 overs without losing wickets, but South Africa will push for to make the best use of the new ball and to make the best use of power play and to try and get a good score, try and get 50-55 runs on board, and in the process they will lose wickets. And that's the nature of the beast of T20, and I think we will get to see a very fascinating contest, with England being smart, England playing the strategic game better than South Africa at this point of time.
3: Khyati, इंग्लैंड की कप्तान ने तो अपना काम कर दिया है, अब बारी है साउथ अफ्रीका की कप्तान की। उनकी अच्छी पारियां अभी तक आई नहीं है, कितना अहम रोल होगा इस बड़े रन चेज में?
4: डेफिनेटली उनको थोड़ा सा पिच इन करना होगा आज के मैच में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज ही उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, बिकॉज अच्छा स्कोर है, अच्छा टोटल है, अब देखिए वो किस तरीके से इसको कॉन्ट्रीब्यूट कर पाती है।
1: एंड राजा, वी हैव सीन लॉरेन बेल बारिंग वन गेम इन द ग्रुप स्टेज गिव साउथ अफ्रीका रादर इंग्लैंड अर्ली विकेट्स।
2: अगेन दिस इज अ बिग गेम, सेमीफाइनल, दे विल हैव टू play at their best and think of contributing to the team. If you can pick up a few early wickets, nothing like that for England, but they've got a good score to defend.
1: Absolutely, 170 is what South Africa would be out in the pursuit of. Thanks a lot to each one of you for your analysis. As we turn our attention to the second innings, now South Africa are eyeing third successive finals, England looking to win the World Cup at home.
5: Hit 20. मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
6: ओवल का मैदान, जहां पर फाइनल में पहुंचने की जद्दोजहद T20 महिला विश्व कप के मुकाबले में, जिसका आयोजन इस वर्ष इंग्लैंड और वेल्स में हो रहा है। दूसरा सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। लॉरा वॉलवर्ट साउथ अफ्रीका की टीम की कप्तान, और उनके साथ हैं तैजमिन ब्रिट्स दूसरे छोर पर। और इंग्लैंड के सामने, इंग्लैंड ने इनफैक्ट 169 रन बनाए, तो साउथ अफ्रीका के सामने 170 रन का लक्ष्य रखा गया है इस मुकाबले को जीत करके फाइनल में पहुंचने के लिए। ओवर की दूसरी गेंद, लिंसे स्मिथ आई हैं गेंदबाजी करने के लिए, और उनकी गेंद को पंच किया गया था लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक रन के लिए छोर बदला है। लॉरा वॉलवर्ट ने स्कोरिंग की शुरुआत की है, तैजमिन ब्रिट्स अब स्ट्राइक पर होंगी। तैजमिन ब्रिट्स एक बहुत ही करिश्माई क्रिकेटर हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, बल्कि बहुत ही करिश्माई स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उनके बारे में जरूर हम जिक्र करेंगे। अच्छी गेंद इस बार मिडल और लेग स्टंप की लाइन में अंदर की ओर आती हुई, दाहिने हाथ के बैटर के लिए लो रहती हुई, और बल्ला अंतिम क्षणों में अड़ाया था तैजमिन ब्रिट्स ने। हालांकि गेंद पहले ही टिप्पा खा चुकी थी, लेकिन एक तरीके से सवाल तो बहुत गंभीर पूछा गया था लिंसे स्मिथ के द्वारा तैजमिन ब्रिट से। एक रन बिना किसी नुकसान के 170 रन का लक्ष्य इस

0: thrower. Am I right, Shivendra? That's what you were coming to.
1: Yeah, बिल्कुल जेवलिन थ्रोअर थी और अपने देश के लिए वो वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं. अनफॉर्चुनेटली बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से ओलंपिक्स की उनकी यात्रा अधूरी रह गई थी, लेकिन ओलंपिक्स में जो कुछ अधूरा रह गया था उसे क्रिकेट के मैदान पर पूरा करने का उन्होंने संकल्प लिया है. और आज बहुत ज़रूरत है साउथ अफ्रीका को उनकी एक बेहतरीन पारी की. एक बहुत ही शानदार पारी वो खेल भी चुकी हैं इस मुकाबले में, इस विश्व कप में 69 गेंदों में 114 रन नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने बनाए थे और फिलहाल 101.5 ओवर के बाद 11 रन बने हैं साउथ अफ्रीका के सामने. टारगेट 170 रन का है. इस ओवर में एक चौका, दो वाइड डिलीवरी, लॉरेन बेल का ओवर समाप्त हुआ. दो ओवर के बाद 11 बिना किसी नुकसान के दक्षिण अफ्रीका.
2: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
0: A boundary on the fourth ball of the over. After that, Lauren Bell adjusted her line, delivered the next one on the pads, which was flicked away for a single. And then the last delivery was on a length to Laura Wolfart, who punched it towards cover. So a single and a dot ball after the boundary, which means at the end of the second over, 11 without loss are South Africa. Next over will be bowled by Lindsay Smith, who starts off with a delivery which is wide off, and it has been flayed away through the backward point region for four.
3: Ye laga abha ka choka.
0: So Tasmin Brits on the prowl. This time around the ball did not swing in with that release of hers as it had been doing in the first over. This one spun away and Brits was ready, went on to the back foot and slashed it away to the boundary. The next delivery on a good length, this time closer to the off stump, and therefore drives it off the back foot. Does Brits picks up a single, moves to 13, and what a story it has been. That Shivendra was telling you she was very close to playing in the 2012 London Olympics. Of course that did not materialize, but here in that same country, in the city of London, today she has the opportunity to do good for South Africa.
1: स्ट्राइक पर है कप्तान लॉरा वॉलवर्ट. तीन गेंदों में एक रन. स्टेप आउट किया, मिडल और ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद थी. मिड विकेट या लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलना चाहती थी. गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, लेकिन अच्छी बात यह कि कारपेट के सारे गेंद लुढ़कती हुई दूर गई थी. और लिंसे स्मिथ कई सवाल पहले ओवर में पूछती हुई नजर आई थी दोनों बैटर्स से. दूसरे ओवर में अभी तक अपेक्षाकृत कामयाब नहीं हुई. पहली गेंद पर चौका, बाद की दोनों गेंदों पर सिंगल, यानी कुल मिलाकर के 6 रन 3 गेंदों में बनाए जा चुके हैं. इस बार ऑफ स्टंप के बाहर हाफ वॉले पर लिया, ड्राइव किया डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की ओर. गेंद जा रही है, दो फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, रोक नहीं पाएंगे. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए.
3: ये लगा आभा का चौका.
1: लिंसे स्मिथ का ये ओवर अच्छा खासा प्रोडक्टिव साबित होता हुआ. फुल लेंथ डिलीवरी हाफ वॉली पर लेकर डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में पंच किया था. दो फील्डर प्रयास कर रहे थे, प्रयास असफल रहा और कामयाब हुई बैटर. 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. कवर और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में लगभग 18-19 मीटर का फासला था, उस गैप का इस्तेमाल किया टैस्मिन ब्रिट्स ने. 12 गेंदों में 17 रन पर पहुंच चुकी हैं. एक बार फिर से इस बार पैर से टकराई है उनकी गेंद. थोड़ी सी मुश्किलों में तो हैं क्योंकि एक बार गेंद उनके थाई पैड के आसपास लगी थी, तब थोड़ा सा मुश्किल में दिखी थी. ऐसा लगा था एब्डोमेन की साइड में बॉल लगी थी. इस बार पैर पर लगी थी, स्ट्रेट बल्ले से इस बार खेला. मिड ऑफ की दिशा में गेंद सीधे फील्डर के पास पहुंचती हुई. तो डॉट डिलीवरीज जो भी आती हैं वो उनका मोल सोने से कम नहीं होता है, और खासतौर पर ऐसे मुकाबले में जहां फाइनल में पहुंचना दांव पर लगा हुआ हो. और 170 रन का लक्ष्य है दक्षिण अफ्रीका के समक्ष, लेकिन उन्होंने अच्छी सधी हुई शुरुआत की है ये कहा जा सकता है. और जब तक साउथ अफ्रीका का जो टॉप ऑर्डर है अगर वो डिलीवर करता है, जिसके लिए डिलीवर करना आज बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, तभी फाइनल की उनकी राह कुछ आसान हो सकती है.
0: Right, 21 without loss after 3 overs. Tasmin Brits has done the bulk of scoring. She has been the chief aggressor so far. 17 of 14 deliveries against her name. 3 boundaries has been hit, and she has been hit on the body a couple of times as well. In the previous over, there was an occasion where she inside edged one ball onto her boot and then hobbled, but she's a tough nut to crack, and that is exactly what she's exhibiting. Meanwhile, the next delivery from Lauren Bell, the first of the fourth over, is down the leg side, and very deftly Wolfart tries to get a tickle on it. She even gets a tickle on it. However, Amy Jones, the wicketkeeper, moves to

0: her left in order to cut it off and end the possibility of any sort of a run. So dot ball to start off with, the next delivery onto the stumps on a fuller length, and a delectable on drive from Laura Wolfart, which has been cut off superbly by Sophie Eccleston at mid-on, who moves towards her left and puts in a nimble slide in order to ensure that the South Africans do not get any more than a single. Now remember folks, England lost to South Africa in the semi-final of the 2025 World Cup. They lost to South Africa in the semi-final of the 2023 T20 World Cup as well. And there was a commonality between those two games. What it was, I'll tell you after this ball. The next delivery on a fuller length, in line with the middle pole, and nudges it towards mid-wicket. Does Tasmin Bridge to pick up another single. That takes the score to 23 without loss in 3.5 overs. In both those matches, Laura Wolfart and Tasmin Brits were the heavy scorers. Wolfart scored 169 and Brits scored 45 in the ODI World Cup semi-final. And in the 2023 T20 World Cup semi-final, Wolfart scored 53, Brits scored 68. And just as I say that, Laura Wolfart picks up her first boundary. Ye laga, abha ka choka. Delivered on the fuller side of good length. In fact, I would say it was a full delivery in the channel outside the off stump. And Laura Wolfart pressed forward and then unleashed a robust off drive. Nat Siva Brunt moved towards her right and put in a dive at mid off. However, she wasn't able to stop the ball. Such good was the timing of the bat of the South African skipper, who has now moved to 7. Next delivery, Lauren Bell pulls her length back to a good length, angles this one in towards the leg stump, 114 kilometers or thereabouts on the speed gun, and a defensive dab from Laura Wolfart. So both Wolfarts and Brits in both those semi-final victories for South Africa were the heavy scorers, which means England cannot take them lightly. They need to get them out as soon as possible. It goes without saying, doesn't it? Fourth overs, last ball. Lauren Bell runs in over the wicket and Laura Wolfart steps out. And after seeing her step out, Bell adjusts into a short ball, delivers this one outside the off stump. However, Wolfart was also able to adjust to the steeply rising delivery. She ends up cutting it towards deep backward point and picks up a comfortable single to mark the end of the fourth over. 28 without loss.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
1: तुम हो ही भुलक्कड़.
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
5: 170 रन का लक्ष्य है दक्षिण अफ्रीका के समक्ष. उन्होंने बनाए हैं 28 रन 4 ओवर के समाप्त होने के बाद, यानी रन बनाने की रफ्तार है 7 रन प्रति ओवर. और लॉरा वुडवर्ट और टैस्मिन ब्रिट्स बेहतरीन बल्लेबाजी के नमूना पेश करते हुए. चार्ली डीन का आगमन हुआ है, आते ही उनका स्वागत किया गया. लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है. 4 रनों के लिए लॉरा वुडवर्ट के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन चौका.
6: ये लगा आभा का चौका.
5: शानदार अंदाज में बल्लेबाजी इन दोनों बैटर्स पर. कितना दारोमदार है. अभी दर्पण ये डेटा आपके साथ साझा कर रहे थे. एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस बार ड्राइव किया गया, स्टेप आउट करके हाफ वॉली पर लेकर 2-3 कदम आगे बढ़ते हुए लॉरा वुडवर्ट बेहतरीन फॉर्म में दिख रही हैं. हालांकि इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक उनके बल्ले ने वो आग नहीं उगली है जिसके लिए वो जानी जाती हैं, लेकिन आज साउथ अफ्रीकन फैंस उम्मीद कर रहे होंगे कि वो डिलीवर करेंगी. मिड विकेट की दिशा में अगली गेंद को खेला गया है. दोनों बैटर छोर बदलेंगे. पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद डॉट डिलीवरी, तीसरी गेंद पर सिंगल. और टैस्मिन ब्रिट्स के बारे में हम आपको बता रहे थे, जिन्होंने कि पूर्व जैवलिन थ्रोअर हैं और उन्होंने 2007 में 16 वर्ष की आयु में विश्व युवा एथलेटिक्स में जैवलिन का गोल्ड मेडल जीता था अपने देश के लिए. पूरा परिवार खेलों को समर्पित है. अगली गेंद स्ट्रेटिज डिलीवरी थी. क्या बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है, देखना दिलचस्प होगा रिप्ले में. लेकिन न केवल बैटर बल्कि विकेट कीपर एमी जोन्स भी पूरी तरीके से बीट हुई इस पर, और बाई करार दिया गया, यानी गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं था. लेकिन बड़ा नजदीकी मामला था और गैदर भी नहीं कर पाई थी एमी जोन्स विकेट के पीछे. लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई नुकसान नहीं हुआ. साउथ अफ्रीका को क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की जो टेंडेंसी है वो फटाफट क्रिकेट का संस्करण है उसमें आम

0: Africa currently need 127 more of the remaining 86 balls.
1: तो परिस्थितियां बहुत आसान नहीं, लेकिन साथ ही कुछ भी असंभव नहीं क्रिकेट के मैदान पर, न जीत न हार। और जाहिर सी बात है कि प्रयास तो करने होंगे दक्षिण अफ्रीका को। जिस तरीके से इंग्लैंड की शुरुआत हुई, बेहद ख़राब शुरुआत हुई, 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर, इनफैक्ट 23 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिर गए थे। और उसके बाद क्या साझेदारी हुई नैट सिवरब्रंट और हैदर नाइट के बीच में, और इन दोनों ही बैटर्स ने उसी क्रम में अपने अर्धशतक पूरे किए, इंग्लैंड की टीम को 169 के स्कोर पर पहुंचाया। हालांकि दोनों खिलाड़ी लगातार एक के बाद एक आउट हुई और अपनी टीम की ओर से बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहा। नैट सिवरब्रंट ने 75 रन बनाए 46 गेंदों में और हैदर नाइट ने 58 रन बनाए 47 गेंदों में। एंड्री डक्सन का आगमन हुआ है, 6 पारियां खेली हैं इस विश्व कप में। और जैसा हम इशारा कर रहे थे कि दर्पण ने भी इस ओर इशारा किया कि जो एक ओपनिंग पार्टनरशिप है वो उतनी ज़्यादा पुष्पित पल्लवित हुई नहीं साउथ अफ्रीका की ओर से जितनी उम्मीद की जा सकती है। नई बल्लेबाज डक्सन हाफ वॉले पल्ले का ड्राइव एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, नैट सिवरब्रंट के पास गेंद पहुंची है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया है और रन बनने की तो कोई संभावना है नहीं। एक अजीबोगरीब शॉट खेला गया था, हालांकि बात वही है अगर सर्किल क्लियर हो जाता तो शायद परिस्थितियां डिफरेंट हो सकती थी। सिमिलर डायरेक्शन में जाती हुई बॉल रन के लिए नहीं। 6 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका 43 एक विकेट के नुकसान पर।
2: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: 43-1 at the end of the power play, which means South Africa have had a better return than what England had of their first 6 overs. As Shivendra was telling you, they scored 35 for the loss of 3 wickets in their batting innings. However, the big wicket of Laura Wolfhart has just fallen, and we are saying it's a big wicket because all of you remember what she did in the 50 over World Cup. All of you must remember what she even did in the 2023 T20 World Cup semi-final. Anyhow, England go to who is arguably their best bowler, or renowned so throughout the world. Sophie Eccleston, the left-arm spinner, begins her spell, delivers the first one on a drivable length in line with the stumps. That allows Tasmin Brits to press forward and push the ball towards long on and pick up a comfortable single. So a single to start off what is the 7th over, 44-1 are South Africa in pursuit of 170. Anarie Dirksen now on strike. The next delivery is slightly flighted and the catch has been dropped. Looks like it's Charlotte Dean who has put this one down. Yes, indeed, it is the England vice captain. Flighted delivery from Eccleston, inviting the big shot from Anarie Dirksen. Dirksen went for the lofted drive over mid-off and stationed at the edge of the circle. Charlotte Dean backpedaled a couple of steps before leaping up in the air. She got one hand on the ball, but the ball did not stick. So an opportunity goes down and a single has been added. Next delivery on a good length from Eccleston has been drilled down to long off for a single, which takes Brits to 24 in South Africa. 46-1 after 6.5 overs. A big opportunity has just been squandered.
1: इस तरीके के जो मौके आते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कैचेस विन मैचेस, तो अगर इस तरीके के अवसर गंवाए जाते हैं तो कई मरतबा आपको पछताना भी पड़ सकता है। इस बार मिडल ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद थी, शॉर्ट ऑफ टेंड डिलीवरी, बैकफुट पर जाकर के पंच किया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, डीप में प्रोटेक्शन है, एक रन मिलेगा बड़ी आसानी के साथ। तो लॉरा वोल्वर्ट का विकेट 6th ओवर में लिया गया, लिंसे स्मिथ की गेंद पर वो आउट हुई। सोफी एक्लिस्टन का आगमन हुआ है, एक बार फिर से क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश, मिडल और ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद है, लगभग फुल लेंथ डिलीवरी है और उसे मिड विकेट की दिशा में खेलना चाहती थी। टैडमिन ब्रिट्स भाग्यशाली हैं कि गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं, कोई मिसक्यूट शॉट नहीं गया। उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, 22 गेंदों में 24 रन बना करके खेल रही हैं। डॉट डिलीवरी 1-4 सिंगल आ चुके हैं इस ओवर में, पारी का 7th ओवर है। इस बार बैकफुट पर जाकर के कट किया, शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया, इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। 7 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर

0: घबराइए मत, जानिए आभा के बारे में।
1: आभा
0: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
2: South Africa need another 123 runs to win in 78 balls. Big news, Annelie Dirksen was dropped, was given a lifeline when she was on zero. She has moved to two now. At the other end is Tasmin Brits, batting on 24 of 23. And looks like Freya Kemp has been given the ball in hand. Freya Kemp, left-arm seamer, so provides a bit of variety in this particular attack. She starts off over the wicket with the keeper up to the stumps, delivers this one on the middle stump on a good length, and Dirksen was looking to flick it away towards the onside. However, she ended up closing the face of the bat a little too early. The leading edge takes the ball into the cover region and allows a comfortable single. However, Dirksen will not be happy with the way things have started for her. That was not a convincing shot. Now remember, Sune Luse is a part of this playing 11 today, who used to open for South Africa. She hasn't come out to bat thus far. South Africa have a deep batting lineup, and hence nobody is saying that they are out of the game just yet. But England are squeezing a few tidy overs over here. Good length delivery in line with the body has been nudged towards the square leg region for yet another comfortable single. So two singles of the first two balls to get the eighth over started. South Africa are 49 for one. The previous over fetched four runs, which included one drop catch. Before that, the successful over which produced Wolfart's wicket fetched only 7 runs. So a quiet face for England this, and there comes another miscued shot from Dirksen. This time the catch will be taken. It is the experienced palms of Heather Knight which complete the catch in the backward point region. A length delivery which was angled away towards outside off, slanting away from the right-hander. Annelie Dirksen pressed forward and swung her bat with ambition, only to connect with the outer half of it, and the ball went flying towards backward point, where Heather Knight had ample time to settle herself underneath it and eventually complete the catch. She is as safe as a bank, and that scratchy knock from Annelie Dirksen comes to an end, 49 for 2 after 7.3.
3: निश्चित तौर पर एक खराब स्ट्रोक खेला गया एनी डक्सन के द्वारा, और ऐसे समय जब इतने हाई स्टेक्स हो, देखने में ये आ रहा था कि पिछली दो तीन गेंदों पर भी उन्होंने जो स्ट्रोक्स खेले थे वो उतने कन्विंसिंग नज़र नहीं आए थे, और तारीफ करनी पड़ेगी कैंप की कि उन्होंने आते ही अपनी टीम को एक अच्छी सफलता दिलाई है, और बहुत ही शानदार अंदाज में शुरुआत की गई थी साउथ अफ्रीका की ओर से, जबकि एक तरफ खेल रही थी टैस्मिन ब्रिट्स और दूसरी ओर थी कप्तान लॉरा वुलवर्ट। उसके बाद लॉरा वुलवर्ट के आउट होने के बाद अभी अभी कुछ देर पहले एक दूसरा विकेट गिरा, और अब मैरिजन कैप का आगमन हुआ है। मैरिजन कैप 5 पारियों में 119 रन बनाने में कामयाब हुई हैं इस विश्व कप में, और चूंकि पार्टले समाप्त हो चुके हैं तो 4 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के बाहर तैनात किए जा सकते हैं, सर्किल के बाहर इनफैक्ट तैनात किए जा सकते हैं। कैंप को अपनी तीसरी गेंद पर विकेट मिला है मिडल और लेग स्टंप की दिशा में, शॉर्ट ऑफ लेंथ कड़ाइयों का इस्तेमाल करके मोड़ा उसे फाइन लेग की दिशा में। खिलाड़ी डीप में तैनात थी, जब तक आए गेंद को फील्ड करें, थ्रो करें एमी जोन्स के पास, तब तक एक रन लेने का मौका। दोनों बैटर्स ने छोर बदल लिया है, और खराब स्ट्रोक था, क्रॉस बैटेड बल्ले के ऊपरी सिरे से गेंद टकराई थी, लेकिन अच्छा कैच लिया गया और कैंप को मिलती हुई ये पहली सफलता, इंग्लैंड को मिलती हुई दूसरी सफलता। टैस्मिन ब्रिट्स 24 गेंदों में 25 रन बनाकर खेल रही हैं। स्लोअर डिलीवरी इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, कट करने का प्रयास था, अंतिम क्षणों में स्ट्रोक को चेक किया था। 88-89 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कैंप के द्वारा, बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रही हैं। जेंटल मीडियम पेस है, लेकिन यहां पर स्लोअर डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर और डॉट डिलीवरी में कन्वर्ट होती हुई। 25 गेंदों में 25 रन, साउथ अफ्रीका का स्कोर 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शॉर्ट डिलीवरी थी, फाइन लेग की दिशा में खेला है, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। थ्रो आ रहा था बॉलर सेंड पर, कैंप हालांकि थोड़ा एडवांस कर गई थी, लॉरेन बेल ने बड़ी तेज रफ्तार में थ्रो किया था, एक रन लेने में कामयाबी। 8 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका 51 2 विकेट

0: के नुकसान पर।
1: राइट, 119 मोर नीडेड ऑफ द रिमेनिंग 72 बॉल्स। हाउएवर इन द लास्ट 3 or 4 ओवर्स यू कांट हेल्प बट फील दैट इंग्लैंड हैव टाइटन देयर ग्रिप ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट। द लास्ट बाउंड्री केम इन द 6th ओवर, व्हिच मींस वी हैव हैड 15 deliveries without any boundary now, and the momentum seems to be shifting towards the home team. Remember, England have won every World Cup that they have ever hosted. It goes back to 1973, the first World Cup in the sport of cricket that was ever organized was a Women's World Cup. They won it. They won it in 1993. They won it in 2017. These are obviously the 50-over World Cups. And they won the inaugural T20 World Cup in 2009 too. Good length delivery from Sophie Eccleston, who begins her second over in line with the off stump. The batter advances and drills it down towards long off to pick up a comfortable single. That single takes Brits to 27 and brings Marizan Karp back on strike. Marizan Karp prepares to face what will be the second ball of the 9th over. Fuller delivery from Eccleston in line with the middle pole has been warded off to mid on. So a single and a dot ball to start the proceedings. Next delivery slightly shorter outside the off stump, opens the face of the blade, does Marizan Karp. She was looking to thread it through the gap between short third and backward point. However, the fielder at point moved swiftly to her left in order to cut it off. Looks like it was Danny Wyatt Hodge who did the fielding, and that keeps the batters down to one. Next delivery backs away to the leg side. The Tasmin Brits picks it off the stumps, drives it towards the deep point boundary. Lindsay Smith, who was stationed at cover, runs towards the fence and then puts in a dive. And whilst she goes over the ropes, she ensures that on her way, she is able to flick the ball away from the boundary cushion. Brilliant piece of fielding this. This is the modern way of fielding. You do not go around the ball and slide it, thereby saving yourself a fraction of a second. Some people like to call it the Brendan McCullum way, but this has become very, very common. She saved a run for her team. Only 3 is what South Africa got of that delivery. Well done, Lindsay Smith. Next delivery, slightly fuller than the previous one on the pads, and this has been tucked away, clipped away neatly towards deep backward square leg. Another single to be added. So this over has thus far produced 6 runs, one ball remaining in it. But the most important thing, South Africa have still not found the boundary. Next delivery, it has been drilled down to long on. In fact, jackhammered down to long on, should I say. That's how hard the batter hit it on that occasion. In fact, the non-striker was lucky to get out of the way. It was Tasmin Brits who fetches a single to herself with that. And that marks the end of the 9th over, 58 for 2.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: ओवल के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के सामने लक्ष्य है 170 रन बनाकर के इस मैच को जीतने का, सेमीफाइनल जीतने का, फाइनल में प्रवेश करने का। और इंग्लैंड की ओर से कैंप आई है नया ओवर लेकर के। हालांकि उनकी पहली गेंद मिडल और लेग स्टंप की लाइन पर है, पैड से टकराई है। सामने है टैस्मिन ब्रिट्स, विचार विमर्श चल रहा है। हालांकि लग नहीं रहा कि इंग्लैंड की टीम रिव्यू के लिए जाएगी, क्योंकि कैंप जिन्होंने पहले ही ओवर में एक विकेट हासिल किया था और जेंटल मीडियम पेस गेंदबाजी करती हैं, काफ़ी सवाल पूछते हुए मैदान पर। उत्सव सा माहौल है और ख़ास तौर पर इंग्लिश खेमे में इस समय काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। कैंप की ये गेंद, इस बार शॉर्ट डिलीवरी, ऑन साइड में पुल करने के अंदाज में खेला, गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं। ब्रिट्स के स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद छिटक करके रह गई, एक रन लेने का अवसर दोनों बैटर्स के पास। तो जो गेंद की रफ्तार है उसमें कैंप बहुत ही चतुराईपूर्ण परिवर्तन करती हुई नजर आती हैं, और इसी का परिणाम है कि उनकी गेंदों पर आज़ादी के साथ दोनों बैटर्स, चाहे मैरिजन कैप हो जो अभी अभी आई हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और टैस्मिन ब्रिट्स जो कि सलामी बैटर के तौर पर आई थी, दोनों ही खुलकर खेल नहीं पा रही हैं। इस बार हाफ वॉली पर लेकर खेला गया स्ट्रोक है, स्क्वायर लेग की दिशा में खेला गया है, बाउंड्री लाइन पर लिंसे स्मिथ मौजूद।

0: थी अंदर की ओर दौड़ी और एक रन लेने से तो नहीं रोक पाएंगी दोनों बैटर्स को, लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की टीम, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज है सातवें ओवर से लेकर के 14 ओवर के बीच का, जहां पर इंग्लैंड ने बनाए थे 78 रन, उन्होंने कोई विकेट नहीं खोया था, और इस समय जब दो विकेट दो टॉप ऑर्डर बैटर पवेलियन में विश्राम कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की ओर से मैरिजन कैप बहुत ही अनुभवी और उनके साथ टैजमिन ब्रिट्स, उनकी कोशिश होगी कि वो पारी को सजाएं सवारे। अगली गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया है, एक रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया है, 61 रन स्कोर हुआ है दो विकेट के नुकसान पर, अभी भी 170 रन का जो लक्ष्य है वो किसी भी हालत में न तो आसान कहा जा सकता है ना ही कठिन कहा जा सकता है। इवन स्टीवंस मामला लग रहा है, अगर हम स्कोर के लिहाज से कंपैरिजन देखें तो भी लगता है कि दोनों टीमें लगभग बराबरी की स्थिति में हैं। इस बार एक रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला है, ऑफ साइड में धीमे से पुश भर किया गया था गेंद, हालांकि स्ट्रोक जरूर खेलना चाह रही थी एक्स्ट्रा कवर की दिशा में मैरिजन कैप, लेकिन गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, एक रन लेकर के उन्होंने छोर बदल लिया। तो स्ट्राइक तो रोटेट हो रही है, 108 रनों की अभी भी आवश्यकता है, 61 गेंदें फेंकी जानी शेष है, भले ही कोई वाइड या नो बॉल नहीं हो। टैजमिन ब्रिट्स 32 गेंदों में 33 रन बनाकर के सामने है, इस बार बहुत जल्दी गेंद की लाइन को पढ़ लिया था, शॉर्ट डिलीवरी थी, हालांकि जो डिजायर्ड रिजल्ट था यानी जो बाउंड्री तलाश रही थी ब्रिट्स वो तो नहीं मिली, लेकिन सिंगल के साथ उन्होंने ओवर समाप्त किया। 10 ओवर के बाद इंग्लैंड के सामने जब 169 रन उन्होंने बनाए थे और 10 ओवर के समाप्त होने के बाद दो विकेट गंवा चुकी है टीम साउथ अफ्रीका की, थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है, और इन दोनों बल्लेबाजों पर इन दोनों बैटर्स पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी भी 100 रन से ज़्यादा का स्कोर बनाना बाकी है। 8 विकेट ऑफकोर्स सुरक्षित हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर जैसा हम कहते हैं कि कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी अनिश्चित नहीं है, 6.3 रन प्रति ओवर के औसत से टीम रन बना रही है।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: No boundaries for 27 balls, and just as I say that, steps out of a crease and flays it towards the extra cover region. Does Tasmin Brits picks up a 4.
3: ये लगा आभा का चौका।
2: Charlie Dean, the English vice captain, starting the 11th over with a good length ball outside the off stump. Brits put her dancing shoes on, converted this into a half volley and punched it towards the left of long off and picked up a boundary. The next delivery, a full toss, and it has been bunted back towards the bowler who collects it on a bounce. So a couple of really loose balls from Charlotte Dean to start this over. Next ball, she shortens the length and the batter tries to go cross-batted swipe. Tries to go for a cross-batted swipe and doesn't quite make the connection that she desired. The ball goes aerial and falls in no man's land in the forward square leg region, and a single has been added. So 4-0-1 to start off the 11th over. Next delivery, this time Marizan Kapp steps out, miscues, and she has been caught in the extra cover region. Natsima Brunt completes the catch, and there's an explosion of joy in the English camp. They have got the big fish. Marizan Kapp has been dismissed. 68-3 are South Africa, and Charlotte Dean's over, which did not begin on the right note, has produced something invaluable for South Africa. All the Indian fans know how important Marizan Kapp is. She played that magnificent innings to knock India out of the competition. And over here, however, she has not been able to deliver. She scores only 5 of 7 balls. She jumped out of her crease. However, Dean saw her coming and hence went wider, hung it up on a length. Eventually, Kapp had to put her left leg across and try and work it towards the onside. However, she ended up closing the face of the bat a little too early. I wonder if she would have rather looked to play it on the offside. The option would have been a better one. But she rather tried to drag it from outside off towards the leg side, and in that ended up miscuing it completely. Easy peasy.

0: on ball. The keeper failed to gather it and the ball trickled away into the ropes behind the wicketkeeper. So by signal, 12 overs done, 79 for 3 South Africa, still needing 91 more to win.
1: तो जब इस मुकाबले की शुरुआत हुई थी दर्पण, तब साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वॉलवर्ट ने टॉस जीता था और उन्होंने ये कहा था कि एकमात्र परिवर्तन टीम में है और वो है सुनील लुईस का आगमन, जो कि एक टैक्टिकल चेंज है। और सुनील लुईस ऐसे मौके पर बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर पहुंची हैं जब शायद उस टैक्टिकल चेंज की सबसे बड़ी परीक्षा हो रही है। सोफी एक्लिस्टन का आगमन हुआ है गेंदबाजी के लिए। इंग्लैंड की ओर से इस विश्व कप में सबसे सफल गेंदबाज हैं, 8 विकेट उन्होंने आज के मैच से पहले हासिल किए थे 5 मैचेस में। इकोनॉमी रेट 5.90 का रहा था और एक छोर पर बैटर लगातार नियमित अंतराल पर कहा जाए पेविलियन का रुख करते रहे हैं और 3 खिलाड़ी पेविलियन में विश्राम कर रहे हैं। दूसरी ओर तैजमिन ब्रिट्स 40 गेंदों में 45 रन बना करके नाबाद हैं। इस बार स्वीप शॉट खेला गया है डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर इनफैक्ट फील्डर तैनात हैं और बड़ी आसानी के साथ उसे फील्ड किया गया। कैंप थी वहां पर, रन बनने की संभावना थी, उसका पूरा फायदा उठाया, सिंगल से दोनों बैटर्स ने छोर बदला। तो क्रिकेट में परिस्थितियां किस तरीके से करवट लेती हैं ये इस बात को इशारा करता है। इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की पारी का कुछ विवेचन किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो उससे पता चलेगा कि इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की, उन्होंने 35 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर में। साउथ अफ्रीका ने बनाए 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर के बाद। इंग्लैंड ने बनाए 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर और दक्षिण अफ्रीका ने बनाए 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार स्टेप आउट किया, फुल टॉस पर लिया तैजमिन ब्रिट्स ने। एक्लेस्टन की इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, चार्ली डीन वहां पर मौजूद हैं, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बैटर्स को। साउथ अफ्रीका का स्कोर हुआ 82 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 88 रन चाहिए, 43 गेंदे फेंकी जानी शेष हैं। इंग्लैंड का पलड़ा फिलहाल तो भारी लग रहा है, इस बार स्वीप करने के अंदाज में खेला है। कारपेट के सहारे गेंद बाउंड्री लाइन की ओर पहुंची थी, तैजमिन ब्रिट्स के बल्ले से निकला है 1 रन। 13 ओवर के समाप्त होने के बाद दक्षिण अफ्रीका 83 3 विकेट के नुकसान पर।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: Nearly 12 and a half runs per over required by South Africa if they are to win this match. They are chasing 170, 83 for 3 after 13 overs, and Lauren Bell has been brought into the attack. Lauren Bell, who throughout this tournament we have seen has dedicated a couple of overs towards the death phase, has been brought back in today in the 14th over. Interesting move by England. They want to kill the game right now. They do not want to stake it deep. Starts off with a good length ball, which is in line with the imaginary fourth pole. Sunil Luce backs away to the leg side, and that allows her to work it away towards the backward point region. The ball goes straight to the fielder, and hence there is no run to be had. With every dot ball, the pressure will mount on South Africa. 83 for 3 in 13.1. Luce has scored 4 of 9 balls, which is not ideal by any means at this stage. Next delivery, a slower ball. She steps out and plays it towards the extra cover region. There could be a run out. However, the wicketkeeper has failed to gather the ball cleanly, and Tasmin Brits gets a life. This time around, Luce converted this one into a half volley and then punched it towards Charlotte Dean at extra cover, who was quick to pick it up and hurl it towards Amy Jones. However, Amy Jones was not able to gather it cleanly, or else it would have been curtains for Brits. So Brits gets a life. Can she make the most of it? Next delivery, banged in short, in line with the middle pole. Brits stays besides the line, attempts a pull, connects with the bottom edge of the blade, and the ball goes trickling away towards the backward square leg region. Only a single. The first half of the over has produced only 2 runs. That is not ideal from South Africa's perspective. They've reached halfway the target, but have only 39 balls to score 85 more.

0: fine boundaries. Sune Lewis needs to up the ante. 7 of 11 against her name. Lauren Bell runs into bowl. What will be the penultimate ball of her over? It's a slower ball on the shorter side of good length at the middle pole. And Lewis brings out a robust short arm pull. The ball goes to the fence, gets her 4.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: Almost had to wait for the ball to arrive and delay her bat swing. However, Lewis did it in accordance with the slowness of the ball and in the end placed it well too. This is what they need more of. She placed it between mid-wicket and long on. There's a gaping gap towards it. Next delivery, short ball. This time, she wasn't in control of the pull shot and Sophie Eccleston completes another fantastic catch. Lauren Bell has delivered the goods. She has done exactly what Nat Sivabrant asked her to do, brought in earlier in the 14th over because England wanted to kill the game, and with the wicket of Lewis, they might have done it. South Africa reeling, crumbling under pressure. They are 4 down for 91 as we head into a drinks break.
2: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
3: मुश्किल परिस्थितियों में दक्षिण अफ्रीका, और जैसा हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, 170 रन का लक्ष्य था उनके सामने, क्योंकि इंग्लैंड ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन बनाए थे निर्धारित 20 ओवर्स में इस दूसरे सेमीफाइनल में, जो कि इंग्लैंड के ओवल मैदान पर खेला जा रहा है. और सामने है इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें. इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच जब भी मुकाबले हुए हैं तो जैसे कहते हैं कि बिल्कुल अंत समय में ही फैसला हुआ है. और यहाँ पर लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड ने बहुत ही शानदार वापसी की है. पहले उन्होंने बल्लेबाजी में अच्छी वापसी की हैदर नाइट और नैट सिवरब्रंट की बदौलत. नैट सिवरब्रंट ने 75 रन बनाए, हैदर नाइट ने 58 रन बनाए. 46 गेंदों का सामना किया नैट सिवरब्रंट ने, हैदर नाइट ने 47 गेंदों में 58 रन बनाए. और शतकीय साझेदारी ताबड़तोड़ अंदाज में पूरी हुई, जिसके बदौलत इंग्लैंड पहुंचे 169 रन पर. 170 रन के लक्ष्य की तलाश में जब साउथ अफ्रीका की पारी की शुरुआत हुई तो विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे. कप्तान लॉरा वॉलवर्ट आउट हुई, टैजमिन ब्रिट्स एक छोर से संभाले हुए हैं पारी को, लेकिन अभी सोने लूस कुछ देर पहले आउट होकर के पवेलियन वापस लौटी हैं. और चौथा विकेट तो 6 ओवर के बाद 43 रन एक विकेट के नुकसान पर, 7 से 14 ओवर के बीच में सिर्फ 48 रन बनाए गए हैं दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, और उन्होंने 3 विकेट गंवा दिए हैं. और इसी परिस्थिति में, यानी 7 से 14 ओवर के बीच में, इंग्लैंड ने बनाए थे 78 रन और उन्होंने कोई विकेट नहीं खोया था. और ये वो मौका था, ये वो कंसोलिडेशन स्टेज थी, जहां पर नैट सिवरब्रंट और हैदर नाइट इंग्लैंड की पारी को सजाने संवारने का काम कर रहे थे. और वही जो सजाना संवारना था 7 से 14 ओवर के बीच में, ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाया है दक्षिण अफ्रीका की इस पारी में, जहां मैरिजन कैप आउट हो चुकी हैं, सोने लूस आउट हो चुकी हैं, और कप्तान लॉरा वॉलवर्ट तो सबसे पहले आउट होकर पवेलियन वापस लौटी थी. तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाजी के रोटेशन की, जिस अंदाज में अपने बॉलर्स को रोटेट किया गया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ. इंग्लिश कैप्टन नैट सिवरब्रंट के द्वारा आज टीम में उनका आगमन हुआ था. और जैसा हम आपको बता रहे थे, आंकड़े बता रहे थे, 48 रन बनाए हैं 7 से 14 ओवर के बीच में साउथ अफ्रीका ने, और उन्होंने 3 विकेट गंवा दिए हैं. चार्ली डीन का आगमन हो रहा है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही है. 79 रनों की आवश्यकता है. दक्षिण अफ्रीका को 36 गेंदें फेंकी जानी शेष है. 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 91 रन है 4 विकेट के नुकसान पर. टैजमिन ब्रिट्स 43 गेंदों में 47 रन बनाकर के खेल रही है. बैक फुट पर जाकर के पंच किया, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर गेंद जा चुकी है 4 रनों के लिए.
1: ये लगा आभा का चौका.
3: इसके साथ ही टैजमिन ब्रिट्स का अर्धशतक पूरा हुआ, 44 गेंदों में 51 रन बनाकर के वो क्रीज पर हैं. 115 से ज्यादा का उनका स्ट्राइक रेट है, तो क्या अकेला चना कुछ कर सकता है? टैजमिन ब्रिट्स इसका जवाब देने के लिए फिलहाल क्रीज पर मौजूद हैं. दूसरे छोर से

0: नहीं मिल रहा है, एक और मिसक्यूट शॉट है, गेंद हवा में उछली है, मिड ऑफ की दिशा में कैच लिया गया है, वहां पर कप्तान नेट सिवरब्रंट मौजूद है और इंग्लैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका को लगता हुआ ये पांचवां झटका, 95 रन 5 विकेट के नुकसान पर, चार्ली डीन को एक और सफलता, टैस्मिन ब्रिट्स की पारी का भी अंत हो चुका है।
1: The hopes are dwindling. The target of 170 looks further and further away. Looks like South Africa's wait for that elusive ICC trophy in women's cricket will continue if they continue to bat like this. Tasmin Brits, who scored her 16th 50 in T20Is and is the second leading run scorer, consumed 45 deliveries, and just when the required rate was getting to intolerable levels, she tried to go big, stepped out, tried to go for an ambitious swing of the bat, completely miscued it, and an easy catch for Nat Sivabrant. South Africa are 95 for 5. Two batters who are yet to face a ball are out in the middle, albeit two very credible batters, two very credible lower order hitters, Chloe Tryon and Nadine De Klerk. Chloe Tryon is currently on strike, and we have seen both these batters pull South Africa out of dire situations before, and they need it more than ever today. Charlotte Dean continues, delivers this one on a good length, the ball spinning in towards the middle end leg. The batter Chloe Tryon presses forward and then uses her wrists to turn it towards mid-wicket and picks up a comfortable single. We saw the wicket of Sune loose in the previous over, where a shot ball from Lauren Bell got too big on Sune Lees, and Lees went for that pull shot which she wasn't able to control. A good catch was taken by Sophie Eccleston at short fine leg. After that, in this over, we saw the wicket of Tasmin Brits, who had scored a half century. Flatter trajectory this time around from Charlotte Dean, delivers this one on a good length in line with the off and the middle stump. Nadine De Klerk gets a stubborn full face behind the ball and blocks it. Of course, she will need a couple of balls to get her eye in, to gauge what the surface is doing. You can't expect her to explode from ball one. Next delivery onto the pads. It has been nudged in a deft manner, bunted away almost towards the front of square leg. There is no fielder there, and hence Charlie Dean runs across to field the ball herself and ensures that the batters do not get more than a single. So it has turned out to be a good over for England once again. The required rate going over 14 and over. South Africa need boundaries and need plenty of them. Good length delivery on the middle stump, which Chloe Tryon gets forward to and bunts it towards long on. Picks up a single, end of the 15th, 98 for 5.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: 15 ओवर के बाद 98 रन 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य है 170 रन का, यानी अभी भी 72 रन चाहिए दक्षिण अफ्रीका को अगर यह मैच जीतना है, और 30 गेंदें फेंकी जानी शेष है बशर्ते कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है। 15 ओवर के बाद 98 रन 170 रन का लक्ष्य पहाड़ सा दिख रहा है, और एडिन डी क्लर्क और क्वे ट्रायन इस समय मैदान पर मौजूद हैं, क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों ही बैटर्स ने 2 और 3 गेंदें खेली हैं, यानी दोनों ही नए बैटर्स हैं इस समय क्रीज पर, और दक्षिण अफ्रीका पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश में कामयाब होते हुई इंग्लिश टीम। नैट सिवरब्रंट ने न केवल आज बल्लेबाजी बेहतरीन की है, बल्कि उन्होंने गेंदबाजों को भी बहुत अच्छी तरीके से रोटेट किया है, जिसका सुपरिणाम उनको मिला है, और 2 कैच भी उन्होंने लिए हैं। मेडलो लेग स्टंप की दिशा में गेंद, लेग स्टंप के बाहर ड्रिफ्ट करते हुए जैकलिन विलियम्स की ओर निगाहें जा रही थी कि क्या वो वाइड करार देंगी इस बॉल को, और काफ़ी विस्मृत से दिख रही हैं, अचंभित से दिख रही क्लो ट्रायन, क्योंकि उन्होंने एम्पायर की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा कि शायद इसे वाइड करार दिया जाएगा, लेकिन एम्पायर का फैसला कि संभवतः पैड से या किसी तरीके से बॉल का कनेक्शन हुआ था और इस वजह से उसे वाइड करा नहीं दिया गया। अगली गेंद मिडल और ऑफ स्टंप पर थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, उसे बल्ले से टक

0: टकराने भर दिया, कोई अटैकिंग स्ट्रोक ऑफर नहीं किया, एक रन के लिए छोर बदल लिया दोनों बैटर्स ने। चार्ली डीन आज जो विकेट ले चुकी हैं उसको मिला करके लीडिंग बॉलर्स की कैटेगरी में वो पांचवें पायदान पर आ गई हैं। उन्होंने 9 विकेट अब तक हासिल किए हैं इस T20 विश्व कप में। 3 गेंदें उन्होंने इस ओवर की डाली हैं और काफ़ी प्रभावशाली गेंदबाजी उनकी रही है। 71 रन अभी भी चाहिए, 27 गेंदें फेंकी जानी शेष हैं। 99 रन 5 विकेट के नुकसान पर बाएं हाथ से जेंटल मीडियम पेस गेंदबाजी करती हैं। पॉइंट की दिशा में गेंद पहुंची थी, नैडिन डी क्लार्क के बल्ले से निकला था यह स्ट्रोक, लेकिन रन के लिए नहीं। कैंप इस समय गेंदबाजी कर रही हैं, जिनका हमने जिक्र किया था कि जेंटल मीडियम पेस गेंदबाजी करती हैं और कोई बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट उनकी गेंदबाजी में नहीं है। बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी, लगभग 7-8 कदम का उनका रन अप यॉर्क करने की कोशिश थी, लो फुल टॉस पर उसे पिक किया गया है नैडिन डी क्लार्क के द्वारा। एक रन मिलना चाहिए, पारी का ये 16वां ओवर है और 100 रन पूरे हो गए हैं। हालांकि तालियों से उसका अभिनंदन किया जा रहा है ओवल के मैदान पर मौजूद दर्शकों के द्वारा, साउथ अफ्रीका के डगआउट में भी, लेकिन सच्चाई यही है कि इस समय परिस्थितियां बहुत ही खराब और गंभीर कही जा सकती हैं साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस ओवर में 3 डॉट डिलीवरीज कैंप के और इस बार फिर से वो लेग स्टंप की दिशा में ड्रिफ्ट करती हुई गेंद पैड से टकराई है। दोनों बैटर्स ने छोर बदल लिया है, सुरक्षित पहुंच चुके हैं। 16 ओवर्स के समाप्त होने के बाद स्कोर 101 रन 5 विकेट के नुकसान पर, यानी अभी भी 69 रन चाहिए, 24 गेंदें फेंकी जानी शेष। कैंप ने एक बहुत ही प्रभावशाली ओवर समाप्त किया, 3 ओवर उन्होंने फेंके हैं, सिर्फ 11 रन खर्चे हैं और 1 विकेट उन्होंने हासिल किया है। तो इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के दरमियान जो मुकाबले अब तक होते रहे हैं, कुछ अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें नॉकआउट मुकाबलों के बारे में, तो 2017 में लॉर्ड्स के मैदान पर भारत को हरा करके इंग्लैंड ने मुकाबला जीता था, आखिरी बार वर्ल्ड कप जीता था। तब से जो कंप्लीट मैचेस हुए हैं, 6 कंप्लीट होने वाले नॉकआउट मैचेस में इंग्लैंड ने 4 हारे थे और 2 जीते थे, लेकिन आज लग रहा है कि वो उस आंकड़े को बेहतर करने की ओर अग्रसर हैं और देखना होगा कि बाकी बचे हुए 4 ओवर्स में साउथ अफ्रीका की पारी कहां तक पहुंच पाती है। फिलहाल 69 रन चाहिए 24 गेंदों में।
1: Charlie Dean to bowl her final over. It's now or never for South Africa. First delivery from over the wicket on a good length, drifting in towards the middle pole. Chloe Tryon steps out of a crease and then drives it along the carpet towards the long on fielder. Picks up only a single. But I, at the risk of sounding like a broken record, will reiterate that ones and twos are not going to hurt England. Next delivery, slightly flatter trajectory on a length at the stumps. De Klerk backs away to the leg side and then flays her hands away from the body to push it towards the cover region and picks up a couple before Nat Siver-Brunt chases it down. Interestingly, Nat Siver-Brunt has been running around like a free spirit right throughout this match, even when she was batting, even when she's fielding. The reason why I point that out is because, remember, she is recovering from a calf injury and we were assuming that she might not be 100% fit, but she has laid all those demons to the bed. Around the wicket, this time around from Charlotte Dean, delivers this one in line with the body of Nadine de Klerk, who had backed away to the leg side. In the end, de Klerk was only able to adjust into a dink towards mid-wicket, picks up a single. Next delivery back over the wicket and Chloe Tryon unfurls a big shot and gets a boundary. ये लगा आभा का चौका। A quicker delivery from Charlie Dean. She fired this one in at the stumps on a foolish length. However, the batter, almost as if she was anticipating it, shuffled to the onside in order to give herself the room to swing her arms, went inside out over extra cover and the ball bounced only once in the outfield before crossing the ropes. Changes her angle once again. That Charlie Dean will be looking to bowl in line with the body, exactly what she does, and there's a misfield which produces another boundary for South Africa. ये लगा आभा का चौका। As soon as the bowler changed her angle, Tryon was expecting it to be delivered in line with her body. She shuffled half a step towards the onside only after the ball had left the bowler's hand, and thereby there was no

0: opportunity for Dean to adjust. She drilled it towards long off where it should have been an easy stop for Lindsay Smith. However, she fumbled and allowed a boundary. Next delivery in line with the body. Tryon crouches and swishes across. Ends up finding Lauren Bell at short fine leg. No runs to be had. 17 done. South Africa still needing 57 more to win.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: 17 ओवर के बाद 113 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस बार हाफ वॉली पर लेकर इनसाइड आउट थ्रो खेला। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की बद दिशा में जा रही है गेंद। डीकला के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन चौका।
6: ये लगा आभा का चौका।
5: 117 रन 5 विकेट के नुकसान पर नए ओवर की शुरुआत चौके से की है। स्टेप आउट किया था, 2-3 कदम हाफ वॉली पर पिक किया था बॉल को, सर्किल को क्लियर किया था। तीन खिलाड़ी जो कि ऑफ साइड में सर्किल के अंदर तैनात हैं। 4 रनों का इजाफा डीकला के स्कोर में। लो फुल टॉस पर ड्राइव किया, बेहतरीन फील्डिंग सर्किल के मुहाने पर। अच्छा बैकअप भी आता हुआ। कैंप बहुत ही सक्षम क्रिकेटर के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, तो थोड़ी कोशिश हो रही है फ्लरिश की, कुछ रनों की रफ्तार बढ़ाने की, लेकिन परिस्थितियां बड़ी डिफिकल्ट हैं क्योंकि आधी टीम पेवेलियन में है। हालांकि इस समय दोनों जो बैटर क्रीज पर मौजूद हैं वो काफ़ी कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। इस बार फाइनल की दिशा में गेंद को खेला गया है और जब बॉलर देख रही हैं कि बैटर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो शफल करें, लेग स्टंप के बाहर निकल जाएं, ऑफ स्टंप के बाहर जाएं, स्टेप आउट करें, कुछ रिदम जो है उसको तोड़ने की कोशिश करें गेंदबाज का, तब उसी अंदाज में जवाब देने की कोशिश भी हो रही है गेंदबाजों के द्वारा। क्लोए ट्रायन 10 गेंदों में 12 रन बनाकर के क्रीज पर हैं। बोल्ड हो गई हैं, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, स्ट्रेटिश डिलीवरी। तारीफ करनी पड़ेगी सोफी एक्लिस्टन की, जिनके बारे में हमने आपको बताया था कि सफलतम गेंदबाज हैं इंग्लैंड की ओर से। पहली गेंद पर चौका लगा जरूर था लेकिन उसके बाद क्या शानदार वापसी की है, स्ट्रेटिश डिलीवरी बाएं हाथ से, राउंड द विकेट गेंदबाजी, थोड़ी सी लो रहती हुई गेंद, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक ट्राई किया गेंद की लाइन में आए बगैर और बोल्ड हो गई हैं। तो ट्रायन, उनकी पारी का अंत हो चुका है। 118 रन 6 विकेट के नुकसान पर 17.4 ओवर की बल्लेबाजी के बाद ट्रायन ने 11 गेंदों में 12 रन बनाए, 2 चौके उनकी पारी में शामिल और अब साउथ अफ्रीका के डगआउट में सिर्फ और सिर्फ निराशा पढ़ी जा सकती है और इसके लिए जरूर निश्चित तौर पर डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट तारीफ करनी पड़ेगी नैट सिवर ब्रंट के करिश्माई प्रदर्शन की, जिन्होंने आज जिनका आगमन हुआ इंग्लैंड की टीम में उन्हें शामिल किया गया। काफ इंजरी से जूझ रही थी, पिछले 3 मुकाबले खेली नहीं थी, उसके पहले 2 मैचेस खेली थी, लेकिन आज आते ही उन्होंने चमत्कार किया। जब इंग्लैंड पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर था, 4th विकेट के लिए शतकी साझेदारी निभाई हैदर नाइट के साथ। अब जैफ्टा का आगमन हुआ है जो कि मूल रूप से एक विकेटकीपर हैं लेकिन विकेटकीपर बैटर के तौर पर उनको जाना जाता है। एक्लेस्टन की गेंद मिडल और ऑफ स्टंप पर तेजी से रन चुराने का प्रयास था, कामयाब होती हुई जैफ्टा, उन्होंने स्कोरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। 119 रन 6 विकेट के नुकसान पर एक हताशा में खेला गया स्ट्रोक कहा जा सकता है, जहां पर आपकी कोशिश होती है कि आड़ा तिरछा कोई भी स्ट्रोक खेल करके रन बनाने की कोशिश की जाए। हालांकि क्रिकेट के मैदान पर बहुत बार ऐसा संभव नहीं हो पाता है। थ्रो आता हुआ विकेट कीपर के पास 18 ओवर के बाद 119 रन दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर।
7: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: It's nearly 9:30 PM in London. The sun went down 10 minutes ago. And looks like at the same time the sun went down for South Africa too. 12 balls remaining. They need an improbable 51 runs to win. England have plenty of options. They go to Lauren Bell for the penultimate over. It's Sinalo Jafta on

0: strike. 119 for 6 South Africa. And the over starts with a comical incident. Slower delivery from Lauren Bell, but almost as if Jafta was expecting a pace on delivery. She swished into a horse straddling stance, stood outside the off stump waiting for the ball to arrive and play the lap shot, but the ball never arrived. It was a slower ball. She kept on waiting, and then eventually when she played a shot, she was still early into it. So a dot ball to begin the penultimate over. Next delivery, another slower one, possibly the leg cutter from Lauren Bell. It finishes outside the off stump. Jafta was looking to drive it on the up, possibly through the cover region, but wasn't able to lay bat on ball. Two dot balls means 51 runs now needed off 10 balls. If my math serves me right, that's 5.1 per ball. It is getting out of South Africa's reach. Next delivery, another slower ball. By now, Jafta should be anticipating it. Oh, she's got run out. She pushed it towards Danny Wyatt-Hodge at backward point and set off for the run. Wyatt-Hodge took her time, aimed for the bullseye at the striker's end, and then scored a direct hit. She punches the air in delight. She wasn't able to contribute with the bat in her hand in the manner she has been doing in the group stages, but she has contributed in the field. Danny Wyatt-Hodge effects that run out. Sinalo Jafta, after an innings which lasted 4 balls, she scored 1 run, and now she's walking back to the dugout. South Africa in dire straits, 119 for 7. It won't be wrong to say that they are on the brink of elimination.
1: Yeah, bilkul. Dakshin Africa ke fans jo hain, unhone oval maidan se ab prasthan karna bhi shuru kar diya hai. और इबारत ऐसा लग रहा है कि लिखी जा चुकी है. दक्षिण अफ्रीका हार की कगार पर और इंग्लैंड जीत की दहलीज पर ओवल के मैदान पर इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में अयाबोंगा खाका का आगमन हुआ है, जो कि मूल रूप से एक गेंदबाज हैं. बल्ले से क्या कुछ खास योगदान रहा है, उनका स्ट्राइक रेट है 61 का और सर्वोच्च स्कोर है 12 नाबाद रन जो उन्होंने बनाए थे. दूसरे छोर पर नेडिन डी क्लार्क हैं, 10 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रही हैं. लॉरेन बेल ओवर की अगली गेंद लेकर, 2 डॉट डिलीवरीज हैं. पिछली गेंद पर एक रन आउट आया था, बहुत ही बढ़िया स्लोअर डिलीवरीज का कितना बेहतरीन इस ओवर में उन्होंने इस्तेमाल किया है. और डैनी वियाट-हॉज, जैसा कि दर्पण बता रहे थे कि भले ही बल्ले से योगदान नहीं कर पाई हो, लेकिन जो एक कंप्लीट टीम बनती है, क्रिकेट कहते हैं कि टीम गेम है, फ्लैशेज ऑफ ब्रिलियंस आते हैं, लेकिन जब कंप्लीट टीम, हर खिलाड़ी अपने अपने अंदाज में अपने अपनी तरफ से योगदान देता है, तब वो सूरत हाल निभर कर सामने आती है जो इस समय इंग्लैंड के इस मुकाबले में उनकी ओर से उभर करके सामने आ रही है. पटकी हुई गेंद थी, आंख मून करके खेला गया स्ट्रोक, बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर के गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं था अयाबोंगा खाका को. पटकी हुई गेंद थी, कंधे की ऊंचाई तक आई थी और उन्होंने आगे बढ़ करके ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने का उपक्रम किया था. हालांकि गेंद की लाइन से हट गई थी, अपना चेहरा भी उन्होंने दूसरी ओर घुमा लिया था. और इसी बीच नॉन स्ट्राइकर एंड पर नेडिन डी क्लार्क जो खड़ी हुई हैं, उनका भी बल्ला गिर गया. तो काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन वो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड के पक्ष में जाता हुआ प्रतीत हो रहा है और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है. नेडिन डी क्लार्क, चेहरे पर उनकी मुस्कुराहट है, लेकिन दिल में कहीं बहुत दर्द होगा कि आज भी टीम उनकी कामयाब नहीं हो पाई है. यॉर्क करने की कोशिश थी, परफेक्ट यॉर्कर लॉरेन बेल ने बोल्ड कर दिया है अयाबोंगा खाका को. और 19 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर अब पहुंच चुका है 123 रन 8 विकेट के नुकसान पर, यानी सिर्फ 2 खिलाड़ियां ने बाकी. लॉरेन बेल की कितनी तारीफ की जाए, क्या बेहतरीन गेंदबाजी इस पर्टिकुलर ओवर में उन्होंने की है. बैक ऑफ द हैंड से फेंकी गई उनकी गेंद, परफेक्ट यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी, एक माइटी हीव का प्रयास मिड ऑन, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की दिशा में, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं. अयाबोंगा खाका की इस पारी का अंत हुआ जहां पर एक मिस्क्यूड चौका उनके बल्ले से निकला था 3 गेंदों में 4 रन बना करके. वो पवेलियन वापस जा चुकी हैं और अब कह सकते हैं, वैसे क्रिकेट के मैदान पर ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन जीत